अभी आप सुन रहे हैं आकाशवाणी का आराधना चैनल। आइए अब सुनते हैं श्री राम जन्मभूमि अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

भगवते उत्तम श्लोकाय नम आर्यलक्षणशीलव्रताय नम उपशिक्षितात्मन उपासितलोकाय नमः साधुवादनिकृष्णाय।

गुणविभवैश्वर्यशीलाद्यनवधिक अतिशय असंख्य कल्याण गुणगणम् अप्रमेय कृपारत्नाकरम् भगवन्तम् श्रीरामचन्द्रम् शरणमहम् प्रपद्ये। ओम अप्रमेय कृपारत्नाकराय भगवते श्रीरामचन्द्राय नमः। चरणकमले।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मनपसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

ये आकाशवाणी का आराधना चैनल है। आइए सुनते हैं आकाशवाणी श्रीनगर के बालटाल और पहलगाम से अमरनाथ यात्रा पर विशेष प्रसारण।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के ODT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, श्रद्धा आस्था और अध्यात्म से भरी श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 अपने अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण चरण की ओर बढ़ रही है। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी छड़ी मुबारक यानी भगवान शिवा की पवित्र छड़ी अमरनाथ जी की पवित्र गुफा तक पहुंचाकर यात्रा का समापन को जो है दिव्य रूप प्रदान करेगी। श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा 2026 में 4.5 लाख से अधिक इस वर्ष तीर्थ यात्रियों ने पवित्र गुफा पहुंचकर शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। श्रोताओ, कुछ एक दिनों से जो है छड़ी मुबारक का सफ़र जो है शुरू हो चुका है। श्रीनगर से इस यात्रा का सफ़र शुरू होता है। इसमें साधु संत और शिव भक्त शामिल होते हैं। छड़ी मुबारक केवल एक पवित्र छड़ी ही नहीं बल्कि बाबा अमरनाथ जी की पारंपरिक पूजा और आस्था का एक महत्वपूर्ण प्रतीक है। सदियों से चली आ रही इस परंपरा में पवित्र छड़ी को जो है भगवान शिवा का स्वरूप मानकर पूरी श्रद्धा और विधि विधान के साथ अमरनाथ गुफा तक ले जाया जाएगा। इस पवित्र यात्रा में साधु संत, महंत और शिव भक्त जो है बड़े उत्साह के साथ शामिल हो चुके हैं। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, कल जो है छड़ी मुबारक का छड़ी स्थापना होगी। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरेश्वर मंदिर में जो है पवित्र छड़ी का स्थापना की जाएगी। यही से छड़ी मुबारक को जो है आगे की धार्मिक यात्रा के लिए आगे लिया जाएगा। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर आप हमें FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वीव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोतों, जैसा कि हम बता चुके हैं कि कल से जो है छड़ी मुबारक का पवित्र सफ़र शुरू हो चुका है। कल शारिका भवानी टेम्पल में जो है खसूसी पूजा पाठ का इनका किया गया। आइए कुछ एक झलकी आपको सुनाते हैं।
1: हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।
2: छड़ी मुबारक की, अमरनाथ स्वामी की
3: जय हो।
4: Thank you.

ॐ श्री सारिकायै नमः ध्याये ध्यानं समर्पयामि गङ्गणपतये नमः श्री गौर्यै नमः संकल्पवाक्याणि स्मरेयुः ॐ विष्णोर्विष्णोर्विष्णुः श्रीमद्भगवतो महापुरुषस्य विष्णोराज्ञः पर्वतमानस्य श्रीब्राह्मण्डो द्वितीयपराधे श्रीश्वेतवाराहकल्पे वैवस्मन्मन्तरे अष्टाविंशत्तमे कलियुगे कलिप्रथम चरणे जम्बूद्वीपे भारतवर्षे।

श्रीनगर क्षेत्रांतर्गते श्री शारिका मंदिर परिसरे हरि पर्वत प्रांगणे अमुक नाना नामना हम्मह श्री महंत देवेंद्रगिरी नामना हम्मह श्री अमरनाथ स्वामी छटकाभ्यो भोजनाख्येन गणेश गौरी पूजनम्मह शारिका भगवती पूजनम्मह अमुक गोत्रोत्पन्ना हम्मह भृगु गोत्रोत्पन्ना हम्मह सकल जगत भारत वर्ष समूह विश्व कल्याणार्थ हितार्थाय सुख सांधे स्मृद्धि संवृत्ति।

Katholik. Ziemlich. नीचे से थोड़ा जल लगा आसन को नीचे से।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन सकते हैं। आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, छड़ी मुबारक का पवित्र सफ़र जो है, पवित्र यात्रा जो है, शुरू हो चुकी है। कल जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित श्री अमरीश्वर मंदिर में पवित्र छड़ी की स्थापना की जाएगी। यही से छड़ी मुबारक के आगे की धार्मिक यात्रा के लिए जो है तैयारियां शुरू हो जाएगी। 17 अगस्त को नागपंचमी के पवित्र अवसर पर दशनामी अखाड़ा में पारंपरिक छड़ी पूजन किया जाएगा। इस अवसर पर भगवान शिवा के विशेष पूजा अर्चना की जाएगी और देश दुनिया के भक्तों के लिए कल्याण, शांति और समृद्धि की प्रार्थना भी की जाएगी। 22 अगस्त को मुख्य छड़ी यात्रा का प्रारंभ होगा। छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी 22 अगस्त को। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को जो है अमरनाथ जी की गुफा के लिए लिया जाएगा। छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से ही आगे बढ़ेगी। श्रोताओं, कल जो है शंकराचार्य मंदिर में खसूसी पूजा पाठ का इनकाद हुआ। आइए आपको सुनवाते हैं श्री शंकराचार्य मंदिर में मुनक्कद किया गया पूजा पाठ।
1: शांति शांति रे शांति।

0: सचिवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं सर्वविघ्नो वसान्तये अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे
1: तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः
0: भगतुण्ड महाकाय सूर्यकोटे समग्रवाम्
1: निर्विघ्नम्
0: ॐ घृत्।

शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि श्याम सदा शिवाय नमाम्यहम् शिव परवाराय नमाम्यहम् आहम्।

0: شكر شكر شكر.
1: हाँ इधर से देख रहा हूँ बस थोड़ा सा. भगवते शाम.

अब ये ना एक गुलाब जल हो गया इसमें। थोड़ा पंचम।

0: गंगे चैमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सुन्नतं कुरोः भूर्वस्वः भगवते सां सदाशिवाय समर्पयामि गंगाजलं स्नानं समर्पयामि महाभिषेकः। बाल्टी के नीचे रख के
1: ऐसे
0: नहीं गड़बी से लेके एक गड़बी

0: शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य महाराज की, ज्येष्ठा माता के, सारिका माता के, खीर भवानी माता की, समस्त देवी देवताओं की, महंत दीप इंद्रगिरी महाराज की, धर्म की
1: जय हो,
0: धर्म की
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: कालर कष्टर दुखर दारिद्र सर्व बाबरो भव हर हर जय कर वीर बजरंगी, जय कर वीर बजरंगी, जय कर वीर बजरंगी, नम पार्वती बनाई।
2: श्रोतो आप श्रीनगर के तारीखी श्री शंकराचार्य मंदिर में कल मनक की गई खसूसी पूजा पाठ की सदाबंदी सुन रहे थे। सुबह के 8 बज चुके हैं, आइए अब आकाशवाणी दिल्ली से समाचार सुनते हैं।
3: प्रभात के साथ मैं विशाल शर्मा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। देश के बंटवारे के दौरान पीड़ा झेलने वाले लोगों की याद में आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस मनाया जा रहा है। दिल्ली में अग्निशमन और कारागार विभाग में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को उपराज्यपाल की मंजूरी। आयु सीमा में भी मिलेगी छूट। उत्तराखंड के चमोली में निर्माणाधीन सुरंग में भूस्खलन और जल रिसाव से 7 श्रमिकों की मौत, 14 घायल। और पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कजाकिस्तान की एलेना राय बाकिना को हराकर कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स खिताब जीता। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर हिंदी में प्रसारित होगा, जिसके बाद इसका अंग्रेजी संस्करण भी प्रसारित किया जाएगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में संबोधन के प्रसारण के बाद इसका क्षेत्रीय भाषाओं में प्रसारण दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर किया जाएगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। एक रिपोर्ट।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। यह दिवस आने वाली पीढ़ियों को विभाजन के दौरान लोगों द्वारा झेले गए दर्द और पीड़ा की याद दिलाता है। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
3: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया।

0: दिया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा कि हम विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद करते हैं। इतिहास का वो क्षण जिसने कई जिंदगियों को तहस नहस कर दिया, अपनों को खो दिया गया और असहनीय पीड़ा भी सहनी पड़ी। श्री मोदी ने कामना की कि ये दिन हमारे राष्ट्र में सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा और हम सब मिलकर एक विकसित भारत के निर्माण की दिशा की ओर आगे बढ़ेंगे। केंद्रीय मंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा और सुब्रमण्यम जयशंकर कल हर घर तिरंगा अभियान में शामिल हुए। गृहमंत्री ने लोगों से अपने घरों पर तिरंगा फहराने और हर घर तिरंगा अभियान में लाखों लोगों के साथ जुड़ने का आग्रह किया। इस बीच देश भर में हर घर तिरंगा अभियान उत्साह के साथ मनाया जा रहा है। भोपाल में आज एक तिरंगा रैली का आयोजन किया जाएगा। रैली कोलार 6 लेन रोड पर मदर टेरेसा स्कूल के पास से शुरू होगी और इसमें लगभग 32 किलोमीटर की दूरी तय की जाएगी। आयोजकों को रैली में 1 लाख से अधिक लोग शामिल होंगे। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी रैली में शामिल होंगे। यातायात, पार्किंग, सुरक्षा और भीड़ प्रबंधन के लिए विशेष व्यवस्थाएं की गई हैं। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में छात्रों और नौकरी के इच्छुक उम्मीदवारों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांगों को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
1: रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में पिछले 21 दिनों से जेपीएससी जेएसएससी परीक्षाओं में अनियमितताओं के खिलाफ धरना दे रहे अभ्यर्थी स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर अपने आंदोलन को एक नया रूप दे रहे हैं। छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और इस भारी छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कल दिल्ली मेट्रो की सेवाएं सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह 4 बजे शुरू होंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन ने बताया कि ये व्यवस्था स्वतंत्रता दिवस समारोह में आने वाले विशेष अतिथियों, आमंत्रित लोगों और आम जनता की सुविधा के लिए की गई है। नियमित सेवा शुरू होने तक सभी मेट्रो लाइनों पर ट्रेन हर 30 मिनट के अंतराल पर चलेंगी। लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशन स्वतंत्रता दिवस समारोह स्थल के सबसे नजदीकी स्टेशन है। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और सोशल मीडिया हैंडल @AIRNews हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। समाचार प्रभात में आपका फिर स्वागत है। दिल्ली सरकार ने अग्निशमन सेवा में फायर ऑपरेटर और कारागार विभाग में वार्डर और मैट्रन पदों पर सीधी भर्ती में पूर्व अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण को मंजूरी दे दी है। गृह विभाग के आदेश में उम्मीदवारों के लिए आयु में छूट का भी प्रावधान है। गृह मंत्रालय ने पहले ही सभी केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स में कांस्टेबल और राइफलमैन स्तर के 50% पद पूर्व अग्निवीरों के लिए आरक्षित किए हैं। उत्तराखंड में चमोली जिले के पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन जल विद्युत परियोजना स्थल पर कल भूस्खलन और पानी के रिसाव से 7 लोगों की मृत्यु हो गई और 14 घायल हुए हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सभी एजेंसियों को राहत और बचाव अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। आकाशवाणी के साथ बातचीत में आपदा प्रबंधन और पुनर्वास विभाग के सचिव विनोद कुमार सुमन ने कहा कि आपातकालीन संचालन केंद्रों से स्थिति पर लगातार नजर रखी जा रही है।
2: टनल का कुछ पोर्शन धंस गया है, उसमें पानी आ गया था और पानी आने के कारण लगभग 30 से अधिक लोग थे जिसमें से सभी को रेस्क्यू कर लिया गया है। रेस्क्यू किए गए लोगों में 14 लोग जिंदा हैं और 7 को मृत घोषित किया गया है। वर्तमान में रेस्क्यू काम में थोड़ी सी बाधा हो रही है क्योंकि पानी लगातार आ रहा है।
0: विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर और लाइबेरिया की विदेश मंत्री सारा बेसोलोव नियांती के बीच नई दिल्ली में कल द्विपक्षीय वार्ता हुई। बैठक में भारत और लाइबेरिया के संबंधों की समीक्षा की गई और व्यापार, निवेश, कृषि, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खनन, शिक्षा तथा

0: तकनीक जैसे क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई। नागर विमानन मंत्री के राममोहन नायडू ने कल विजयवाड़ा और वाराणसी के बीच सीधी हवाई सेवा की शुरुआत की। उन्होंने कहा कि इस नई उड़ान से विजयवाड़ा के श्री कनक दुर्गा अम्मा मंदिर और वाराणसी के बाबा काशी विश्वनाथ धाम के बीच तीर्थ पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। इस हवाई सेवा से दोनों धार्मिक शहरों के बीच यात्रा सुविधाजनक हो जाएगी। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के अंतर्गत प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए डिजिटल मुद्रा आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में शुरू की जाएगी। ये पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी वितरण में एक नए विकास का प्रतीक है। ब्यौरा हमारे संवाददाता से।
1: यह पहल भारत सरकार द्वारा कल्याणकारी योजनाओं के वितरण में एक और कदम है। सब्सिडी वाले अनाज के भौतिक वितरण से लेकर डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर DBT और अब सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी CBDC के जरिए डिजिटल डिलीवरी तक। सूत्रों के अनुसार चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश होगा जो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों के लिए खाद्य सब्सिडी के लिए CBDC आधारित DBT को पूरी तरह से लागू करेगा। इस कार्यक्रम की अध्यक्षता पंजाब के गवर्नर और चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया करेंगे। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान मुख्य अतिथि होंगे। केंद्रीय उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी विशेष अतिथि होंगे। उपभोक्ता मामले खाद्य और सार्वजनिक वितरण राज्य मंत्री निमुबेन जयंती भाई के अलावा केंद्र और राज्य के अन्य गणमान्य व्यक्ति भी मौजूद रहेंगे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जलंधर।
0: केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह आज नई दिल्ली में हथकरघा अनुभव केंद्र का उद्घाटन करेंगे। ये केंद्र भारत की समृद्ध हथकरघा विरासत को अनुभव करने, समझने और उससे जुड़ने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री डॉक्टर वीरेंद्र कुमार आज नई दिल्ली में राष्ट्रीय वरिष्ठ नागरिक परिषद की 5वीं बैठक की अध्यक्षता करेंगे। बैठक के दौरान वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण से संबंधित प्रमुख मुद्दों पर विचार विमर्श किया जाएगा। ओडिशा में कम दबाव के क्षेत्र के कारण लगातार हो रही बारिश से जनजीवन प्रभावित है। उत्तरी ओडिशा की कई नदियों का जलस्तर बढ़ रहा है। हमारे संवाददाता ने बताया है कि इस महीने की 20 तारीख के आसपास एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है।
2: उड़ीसा में कम दबाव वाले सिस्टम की वजह से लगातार हो रही बारिश से कई जगहों पर बाढ़ की हालत गंभीर हो गए हैं। भद्रक के अखुआपदा में बैतरणी नदी खतरे के निशान 18.33 मीटर से ऊपर बह रही है और इसका जलस्तर लगभग 19.27 मीटर तक पहुंच गया है। भंडारी पोखरी समेत नदी के निचले इलाकों में फिर से बाढ़ आ गई है और कई इलाके अलग थलग पड़ गए हैं। चंपुआ में बाढ़ के पानी ने एक पुल को बह दिया है जिससे सड़क संपर्क टूट गया है। इसी महीने की 20 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में एक और कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।
0: मौसम विभाग ने केरलम के 6 जिलों के लिए भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है जिसमें अलग अलग स्थानों पर मूसलाधार वर्षा की चेतावनी दी गई है। इस बीच मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट और पश्चिम बंगाल के गंगा के क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में सूती के रघुनाथपुर में एक भयावह हमले में 4 से 11 वर्ष की आयु के 3 बच्चों की मौत हो गई है। आरोप है कि 21 वर्षीय एक व्यक्ति ने 4 बच्चों को अपने घर के एक कमरे में ले जाकर उन पर हसीये से हमला किया। और अब खेल समाचार। पोलैंड की इगा स्वियाटेक ने कनाडा ओपन टेनिस में महिला सिंगल्स का खिताब जीत लिया है। टोरंटो में फाइनल में कल 7वीं वरीयता प्राप्त स्वियाटेक ने दूसरी वरीयता प्राप्त एलेना रायबाकिना को सीधे सेटों में हराया। इस जीत के साथ इन्होंने सीजन का अपना पहला खिताब जीत लिया है। ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR मोबाइल ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध है। और अब आज के समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ हैं मुकेश कुमार बल।
3: धन्यवाद विशाल। संसद के मानसून सत्र का समापन आज सभी अखबारों की पहली खबर है। दैनिक जागरण की सुर्खी है, हंगामे के बीच धुला संसद का मानसून सत्र। राजस्थान पत्रिका के शब्द हैं, न चर्चा न मंथन, सत्ता और विपक्ष की अड़ाअड़ी में बर्बाद हो गए जनता के 171 करोड़ रुपए। अमर उजाला लिखता है, संसद में हंगामे का ग्रहण, 19 बैठकों में 19 घंटे भी ना चल पाई लोकसभा। संसद सत्र से निराशा शीर्षक के साथ हिंदुस्तान ने संपादकीय में लिखा है, मॉनसून सत्र उम्मीदों पर खरा नहीं उतर सका। बड़े अफसोस की बात है कि सत्र के दौरान हर दिन कार्यवाही बाधित हुई। प्रश्नकाल का ना होना सबसे बड़ी त्रासदी है। दिल्ली के लाल किला धमाकों की साजिश रचने में के बड़े खुलासे को भी अखबारों ने

0: Report in Hindustan Times. Delhi Metro to start services at 4 a.m. on Independence Day, says a report in the Tribune. Succession search starts at Tata Sons after Chandrasekhan's exit, headlines Financial Express. And finally, historian Sumit Sarkar passes away, reports the Times of India. And with that, it's back to you, Nishit.
1: Thank you, Tanvi. And now, before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation today on the eve of 80th Independence Day. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Delhi government approves 20% quota for former Agniveers in fire services and prison department. Age limit relaxed. 7 workers killed and 14 injured following landslide and water seepage in under construction tunnel in Chamoli district of Uttarakhand. And Iga Swiatek beats Elena Rybakina to claim the women's singles title at Canadian Open Tennis. For details of these stories and more, log on to our website newsonair.gov.in and newsonair app. And with that, we end the morning news. Have a nice day.
2: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं नीतिका त्यागी। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज और जेल महकमे में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% कोटे की मंजूरी दी है और उम्र की हद में रियायत दी गई है। उत्तराखंड के चमोली जिले में सिरे तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाकये में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। और कैनेडा ओपन टेनिस में ईगा श्यांटेक ने एलेना रिबाकिना को हराकर खवातीन सिंगल्स का टाइटल जीत लिया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें यौमे आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का ये खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नश्र किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले ये खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और इसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का ये खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नश्र किया जाएगा। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खिराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने साल 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिल तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। पेश है एक रिपोर्ट।
3: तकसीम की हौलनाकी को याद करने के दिन के मौके पर कौमी राजधानी समेत मुल्क भर में मुख्तलिफ प्रोग्राम मुनक़िद किए जा रहे हैं। मुल्क की तकसीम के सबब अपनी जान गंवाने वाले और अपने आबाई वतन से बेघर हुए लोगों को खराज अकीदत पेश करने और उनकी कुर्बानियों को याद करने के लिए हुकूमत ने साल 2021 में हर साल 14 अगस्त को यह दिन मनाने का फैसला किया था। यह दिन इस बात को यकीनी बनाता है कि आइंदा नस्लें आज़ाद भारत के वजूद में आने के वक्त हुए तशद्दुद के दौरान लोगों के दर्द और मुश्किलात को याद रखें। आज का दिन लोगों को माशरती तकसीम और इंतशार की लानत को ख़त्म करने और यकजहती समाजी हम आहंगी और लोगों को बाइख्तियार बनाने के जज्बे को मज़ीद मजबूत बनाने की ज़रूरत की याद दिलाता है। मुल्क की तकसीम के सबब इंसानी तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई जिससे तकरीबन 20 मिलियन लोग मुतासिर हुए। आज़ादी का जश्न मनाकर मुल्क उन लोगों को भी सलाम पेश कर रहा है जिन्होंने तशद्दुद के दौरान अपनी जानें कुर्बान कर दीं। दिल्ली से अनुपम मिश्रा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं कौनैन हैदर।
2: तकसीम की हौलनाकियों को याद करने के दिन के मौके पर वज़ीरे आज़म नरेंद्र मोदी ने उन लोगों की हिम्मत और हौसले को याद किया जो मुल्क की तकसीम से मुतासिर हुए थे। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख का एक ऐसा लम्हा करार दिया جس سے لوگوں کی زندگیاں بکھر گئیں، خاندان اجڑ گئے، لوگوں نے اپنے عزیزوں کو کھو دیا اور انتہائی مشکلات کا سامنا کیا۔ جناب مودی نے مزید کہا کہ اس کے ساتھ ہی لوگوں نے اس مشکل کو برداشت

0: बर्दाश्त किया और अपनी ज़िंदगी नए सिरे से शुरू की। सख्तियों को कामयाबी में बदला और मुल्क की तरक्की में बेपनाह तआवुन पेश किया। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी की हर घर तिरंगा मुहिम के तहत आज भोपाल में एक बड़ी तिरंगा रैली का अहतमाम किया जा रहा है। ये रैली सुबह 10 बजे कोलार 6 लेन रोड से शुरू होगी और तकरीबन 32 किलोमीटर का फासला तय करते हुए संत नगर में ख़त्म होगी। इस रैली में 1 लाख से ज़्यादा लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। वज़ीर आला डॉक्टर मोहन यादव और बीजेपी के रियासती सदर हेमंत खंडेलवाल भी इस रैली में शिरकत करेंगे। बारिश के इम्कान के मद्देनज़र रैली के लिए इंतजाम किए गए हैं। चूना भट्टी समेत कई मकामात पर सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं। इन मकामात के जरिए मनुष्यात की लानत के खिलाफ नौजवानों में बेदारी पैदा करने के पैगामात की तशहीर की जाएगी। कल यौम आज़ादी पर दिल्ली मेट्रो की खिदमात पूरे नेटवर्क पर सभी टर्मिनल स्टेशनों से सुबह सवेरे 4 बजे शुरू हो जाएंगी। दिल्ली मेट्रो रेल कॉरपोरेशन DMRC ने कहा है कि यौम आज़ादी तकरीबात में शिरकत करने वाले खसूसी मेहमानों, मदऊ किए गए अफराद और आम लोगों की सहूलत की खातिर ये फैसला किया गया है। DMRC ने यह भी कहा है कि मामूल की खिदमात शुरू होने तक सभी लाइनों पर मेट्रो खिदमात आधे घंटे के वक्फे से चलेंगी। दिल्ली सरकार ने फायर सर्विसेज के शोबे में फायर ऑपरेटर ओहदों और जेल के महकमे में वार्डन और मेट्रन ओहदों पर सीधे भर्ती में साबिक अग्निवीरों के लिए 20% रिजर्वेशन की मंजूरी दी है। उमूर दाखिला के महकमे के हुक्म में अहल उम्मीदवारों के लिए उम्र की हद में रियायत भी दी गई है। ये कदम साबिक अग्निवीरों की बाजाबादकारी की मरकजी सरकार की पॉलिसी के ऐन मुताबिक है। उमूर दाखिला की मरकजी वजारत ने साबिक अग्निवीरों के लिए पहले ही जनरल ड्यूटी पर काम करने वाले कांस्टेबल और सभी मरकजी मुसल्ला पुलिस फोर्सेज नीज आसाम राइफल्स में राइफलमैन सतह पर 50% ओहदे रिजर्व कर दिए हैं। ग्वालियर में टैक्टिक्स एंड एयर कॉम्बैट डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट में स्क्वाड्रन लीडर भावना कंठ ने फायर कॉम्बैट लीडर के तौर पर क्वालिफाई किया है। इस तरह उन्होंने भारतीय फजाइया की पहली खातून अफसर बनकर तारीख रकम की है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में भारतीय फजाइया ने कहा कि ये एक तारीखी कामयाबी है जिससे पेशावराना महारत, जंगी समझबूझ और लीडर्स की हौसला अफजाई के तई फजाइया के अज़्म का इजहार होता है। ये खबरनामा आकाशवाणी से नश्र किया जा रहा है। उत्तराखंड के चमोली ज़िले में एक पनबिजली प्रोजेक्ट के मकाम पर ज़ेर तामीर टनल में पानी के रिसाव और चट्टानों के टुकड़े गिरने के वाक़े में 7 कारकुनों की मौत हो गई जबकि 14 जख्मी हुए। नज़दीक के अस्पताल में जख्मियों का इलाज किया जा रहा है। हमारे नामा निगार ने बताया है कि ये वाक़या पीपल कोटी इलाके में टेहरी हाइड्रोजन डिवेलपमेंट कॉरपोरेशन प्रोजेक्ट मकाम पर पेश आया।
1: इस हादसे की इत्तला मिलते ही जिला इंतजामिया, पुलिस, SDRF, NDRF, फायर सर्विसेज और तिब्बी महकमे की टीमें वहां पहुंच गईं। चमोली के जिला मजिस्ट्रेट गौरव कुमार ने वहां बचाव कार्रवाई की निगरानी की। जख्मी कारकुनों को गोपेश्वर के जिला अस्पताल में दाखिल करा दिया गया है। इधर रियासत के वजीर आला पुष्कर सिंह धामी ने कल रात देर गए देहरादून में रियासत के इमरजेंसी ऑपरेशंस मरकज में राहत और बचाव कार्रवाइयों का जायजा लिया।
2: हमारा प्रयास है कि जितने भी लोग हैं उनका रेस्क्यू जल्दी से जल्दी किया जाए। उसके लिए NDRF, SDRF, जिला प्रशासन की टीम, हमारे यहाँ की पुलिस की टीम, स्वास्थ्य विभाग, आपदा प्रबंधन, सभी लोग मौके पर हैं। उसके साथ साथ सभी जो मशीनरी है वो मशीनरी भी वहाँ पहुँच गई है, वहाँ काम चल रहा है और जल्दी से जल्दी निकालने की सबको कार्रवाई चल रही है।
0: हवा के कम दबाव का हल्का बनने के तनाजुर में ओडिशा में लगातार बारिश होने से बड़े दरियाओं में तुगयानी आ गई है और शिमाली ज़िलों में बैतरणी और बूढ़ा बलंगा दरियाओं से फिर से सैलाब का खतरा पैदा हो गया है। भद्रक में बैतरणी दरिया खतरे के निशान को पार कर गया है जिससे निचले इलाकों में पानी भर गया है और भंडारी पोखरी में कई गाँव पानी से घिर गए हैं। हमारे नामा निगार ने बताया है कि हुक्काम सैलाब की सूरत हाल मजीद खराब होने के अंदेशे के तनाजुर में जरूरी इकदामात कर रहे हैं।
1: ओडिशा में कई मकामात पर लगातार बारिश होने से सैलाब की सूरत हाल संगीन हो गई है। हवा के कम दबाव का हल्का बनने के जेर असर वहां बारिश हो रही है। कई निचले इलाकों में पानी भर गया है। केंद्र जिले में आनंदपुर के मकाम पर भी बैतरणी दरिया खतरे के निशान से ऊपर बह

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बादल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन पा रहे हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता, इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता एस तारिक फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स है, आइए सुनते हैं। तारिक, स्वागत करते हैं आपका।
1: हाँ, बहुत आपको और इस विशेष प्रसारण के सभी श्रोताओं को मेरा शुभ प्रभात। 57 दिनों तक चलने वाली श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब महज 14 दिन शेष रह गए हैं। फिलहाल बदलते मौसम की हालत के मद्देनजर यात्रा गहमा गहमी बालतर और पहलगाम दोनों मार्गों से आर्जी तौर पे मुलतवी है। अलबत्ता इस दौरान इस पवित्र यात्रा से जुड़े एक और अहम धार्मिक जो एक और रस्म है, जो छड़ी मुबारक की तैयारियां जोरों पर है, जिसकी गहमा गहमी श्रीनगर से लेके पहलगाम तक जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 के सिलसिले में छड़ी मुबारक से मुतल्लिक अहम धार्मिक रसूमात और प्रोग्रामों का जो शेड्यूल पहले ही जारी किया जा चुका है। इस पवित्र छड़ी को शिव और शक्ति के प्रतीक माना जाता है और इसके सिलसिले में मुख्तलिफ मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान मुनक्कद किए जा रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में दर्शन की प्रक्रिया मुकम्मल हुई, जबकि 13 अगस्त को शारिका भवन मंदिर में विशेष पूजा की गई। तो कल 15 यानी योम आजादी के मौके पर दिशनामिया कांगड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापन की रस्म अदा की जाएगी, जबकि 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर छड़ी पूजन हो गए। इसके बाद 22 और 23 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंचेगी, जहां गौरी शंकर मंदिर में भूमि पूजन के बाद रात का पड़ाव पहलगाम में ही होगा। 24 अगस्त को चंदनवाड़ी, 25 अगस्त को शेषनाग, जबकि 26 और 27 अगस्त को पंचतरनी में रात का पड़ाव होगा। आखिरकार 28 अगस्त को श्रवण पूर्णिमा के पवित्र दिन छड़ी मुबारक मुकदस गुफा पहुंचेगी, जहाँ बाबा बर्फानी के दर्शन और विशेष धार्मिक रसूमात के साथ श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का रिवायती समापन होगा। श्रोता, छड़ी मुबारक की ये परंपरा सिर्फ कश्मीरी पंडित समाज के लिए ही नहीं, बल्कि कश्मीर के मुकामी मुसलमान समुदाय के लिए भी अपनी एक खास जो तारीख रखता है या अहमियत रखता है। इन्हें मुकामी लोग सदियों से छड़ी मुबारक की रुखसती को सरद मौसम की आमद की अलामत के तौर पर भी देखते आए हैं। छड़ी मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंध है। यही वजह है कि यात्रा की परंपरा का आगाज और समापन छड़ी मुबारक के साथ ही होता है। कहा जाता है कि एक साधु यजन ने अपने भक्तों को श्री अमरनाथ गुफा के जाए और वहां शिवलिंगम के दर्शन करने की हिदायत दी, जबकि इसके शिष्य यात्रा पर रवाना हुए तो यात्रा मार्ग पर राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस ब्रंगीशा के पास पहुंचे और अपनी परेशानी बयान की। ब्रंगीशा ने भगवान शिव के प्रतिज्ञा की, माना जाता है कि भगवान शिव ने इन्हें अपने पवित्र तब्रुक अता की, जिसे बाद में छड़ी मुबारक का नाम दिया गया है। छड़ी मुबारक को शिव और शक्ति की एक पवित्र निशानी माना जाता है। तब से ही यात्रियों का एक बड़ा जत्था रिवायती तौर पर इस पवित्र छड़ी के साथ पहलगाम के रास्ते से श्री अमरनाथ गुफा के जानिब यात्रा करता आ रहा है। अब जरा मौसम का भी हाल जान लेते हैं। तो पहलगाम से श्री अमरनाथ जी गुफा तक यात्रा मार्ग पर आज सुबह मौसम ज्यादातर अब्र आलूद रहा। गुफा के नजदीक दर्ज हरारत तकरीबन 11 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो दिन के दौरान 16 डिग्री तक पहुंच सकता है। नमी की शर 92 से 95% के आसपास रहने की तवक्का है। मौसमी पेशगोई के मुताबिक सुबह के अवकात में बारिश के इम्कान कम है, तमाम दोपहर के करीब वाला इलाकों में हल्की बारिश और वक्फे से बारिशों के दौर मुतवक्का है। बालाई ट्रैक पर बारिश के इम्कान 35 से 25% तक बताई गई है। पहलगाम में भी आसमान उबर आलूद रहने का इम्कान है और दिन के दौरान दर्ज हरारत 16 से 23 डिग्री सेल्सियस के दरमियान रह सकता है। बाज मुकाम पर दोपहर के बाद हल्की बारिशों के दौर भी देखने को मिल सकते हैं। खराब मौसमी हालात के बाद श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल, जैसे हमने पहले भी बताया था, बालतर और पहलगाम दोनों मार्गों से आज भी तौर पर मुअत्तल है। ट्रैक की मरम्मत और बहाली का काम जारी है और यात्रियों से अपील की गई है कि सरकारी तौर पर इजाजत और क्लियरेंस मिलने तक यात्रा मार्ग पर जाने से गुरेज करें।
0: जी
1: तो दूसरी जाने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन जाने BRO बारिशों से मुतासर हसास मकाम पर मलबा हटाने मरम्मत और रास्तों की बहाली का काम बड़े पैमाने पर अंजाम दे रही है। मजमू तौर पे आपको पता ही है कि 3 जुलाई से शुरू होने वाली इस पवित्र यात्रा में अब तक 4,80,000 से ज्यादा श्रद्धालु अमरनाथ जी यात्रा के पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन कर चुके हैं। बताओ, हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इस विशेष प्रसारण के जरिए हम छड़ी मुबारक से जुड़े मुख्तलिफ पड़ाव और इनकी धार्मिक और तारीखी अहमियत और कश्मीर की सदियों पुरानी संस्कृति परंपरा से आपको रूबरू कराते हैं। फिलहाल इसी कामना के साथ कि बाबा बर्फानी के सभी श्रद्धाओं को मनोकामनाएं पूरी हों, इनकी यात्रा सुखद सुरक्षित और मंगलमय रहे। जी
0: बहुत बहुत धन्यवाद तारिक, विस्तार में जानकारी साझा करने के लिए
1: बहुत शुक्रिया।
0: श्रोताओं, ये थे एस तारिक, अपडेट दे रहे थे किस तरह से जो है छड़ी मुबारक का सिलसिला जारी है और मौसमी सूरत हाल को देखते हुए बता रहे थे कि आज जो है मौसम खुशगवार ही रहेगा। ताम ऊपरी क्षेत्र में जो है वर्षा होने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग से मिली ताज़ा सूचना के अनुसार जो है बाल्टल मार्ग और पहलगाम मार्ग पर जो है ऊपरी क्षेत्र में हल्की से दरमियाने दर्जे की वर्षा होने की भी संभावना जताई गई है। ताहम श्रीनगर की अगर बात करें या राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करें, मौसम खुशगवार है और इस खुशगवार मौसम के बीच जो है छड़ी मुबारक की जो शेड्यूल प्रोग्राम्स हैं वो मुनक्किद हो रहे हैं। जैसा कि पहले भी हम बता चुके हैं कि कल जो है छड़ी मुबारक को एक और पड़ाव शुरू होगा और ये पड़ाव शुरू होते ही इख्तिताम होता है 22 अगस्त को रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर। छड़ी मुबारक को जो है पवित्र गुफा पहुंचाया जाता है। क्षण क्षण की सूचनाएं हम आप तक पहुंचाते रहेंगे इस विशेष प्रसारण के माध्यम से। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल, FM पहलगाम, देश के विभिन्न भागों में आप में DTH आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओं, आपको बताते चले इस वक्त हमारे साथ फ़ोन लाइन पर हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट लेकर जुड़ चुके हैं। क्या कुछ हालात रहेंगे आज मौसम के, आइए सुनते हैं तस्कीन से। तस्कीन, स्वागत करते हैं आपका इस विशेष प्रसारण में।
1: जी शुक्रिया। राष्ट्रीय राजमार्ग बिल्कुल ट्रैफिक के लिए बहाल है, बादल है, आज सुबह से ही धुंध छाई हुई है और हल्की हल्की बारिशों का भी इम्कान जाहिर किया गया है महकमा मौसमियात की तरफ से, लेकिन अभी ऐसा मतलब मौसम उसके लिए बन रहा है, मतलब बादल बदल बहुत छाए हुए हैं पूरे इस रामबन बानहाल के क्षेत्र में, जबकि जो हाईवे है जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे ट्रैफिक जो है मामूल का चल रहा है आज, मतलब रूटीन के हिसाब से जो LMV जो मुसाफिर ट्रैफिक होता, मुसाफिर गाड़ियां होती है उन्हें दोनों तरफ के ट्रैफिक में चलने की इजाजत दी जाती है, जिसमें मुसाफिर होते हैं और हजारों की तादाद में जो टूरिस्ट होते हैं कश्मीर की तरफ जाने वाले, तो वो दोनों तरफ के ट्रैफिक में चल रहे हैं, जबकि जो माल बरदार गाड़ियां होती हैं उन्हें एक तरफा ट्रैफिक में ही चलने की इजाजत दी जाती है और ये यात्रा के दौरान इस पर ये जो एक ही तरफ का ट्रैफिक चलाया जाता है, क्योंकि नेशनल हाईवे की सुरताल बहुत जगहों पर खराब है, उस वजह से जो यात्रा शुरू होने से पहले ही 2 जुलाई से पहले ही ये फैसला लिया गया था कि यात्रा के दौरान जो ट्रक्स हैं, जो टैंकर्स हैं, जो गैस या ईंधन वगैरह लेकर कश्मीर आते हैं तो उन्हें अल्टरनेट डे पर चलाया जाएगा। इस दौरान जो मौसम अब्र आलूद बना हुआ है और मौसमी दहशत वही है कि हल्की बारिशों का इम्कान जाहिर किया गया है आज दिन में, और जैसा मालूम है कि आज 6वां दिन है जो श्री अमरनाथ यात्रा का जिसे सस्पेंड किया गया है 9 अगस्त से वो मुसलसल सस्पेंड ही है और यात्रियों को अभी तक मतलब कोई फाइनल डिसीजन सरकार की तरफ से नहीं लिया गया है। इस दौरान चीफ मेडिकल ऑफिसर रामबन जो है डॉक्टर कमल जी जाडू साहब, तो उनमें एक वो डिटेल रिपोर्ट शाया की है जिसमें रामबन डिस्ट्रिक्ट में जो फैसिलिटीज रखी गई थी श्री अमरनाथ यात्रियों के लिए रामबन के चंद्रकूट इलाके में, उसके बाद बानहाल के लाबर ग्राउंड में जहां पर लंगर लगे हुए थे करीबन 3 दर्जन लंगर, तो उनके लिए जो वहां पर जो इंतजाम थे वो 30 दिन के दौरान, अगर यात्रा जो 37 दिन तक चली मौसमी खराबी की वजह से सस्पेंड है अभी, तो उसमें 30 दिन तक उसमें 6-7 दिन मौसम भी खराब रहा, हाईवे बंद रहा, करीबन 6 दिन लगातार यात्रा को मुअत्तल करना पड़ा था, तो उस वजह से जो कुल मिलाकर जो पेशेंट्स का इधर देखा गया है वो 33,000 से जायद 33,000 जो पेशेंट्स हैं जो बीमार थे या मर्द, खवातीन, बच्चे जो भी यात्रा में शामिल थे उनका ट्रीटमेंट यहाँ रामबन के जो भी मेडिकल फैसिलिटीज हेल्थ डिपार्टमेंट की तरफ से रखी गई थी उन पर किया गया है, तो ये बहुत बड़ी तादाद है अगर कहेंगे तो, रोजाना की बुनियाद पर करीबन 300-400 पेशेंट्स को जो देखा जाता था यहाँ पर, 33,000 को उनको और उनमें सबको फ्री मेडिसिन भी दी गई है। इसमें कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिन्हें मतलब उनके जो मतलब सेहत की खराबी की वजह से या उनको क्रिटिकल केयर की जरूरत के पेशेंट, जम्मू श्रीनगर अनंतनाग और जीएमसी अनंतनाग और सिक्किम सौरा और जम्मू की तरफ भी भेजा गया है, उसके ऐसे पेशेंटों की तादाद करीबन 10-12 होगी, जबकि कुल मिलाकर 33,000 पेशेंट्स का बीमारों का जिनको जरूरत पड़ी दौरान यात्रा उनको रामबन के डिस्ट्रिक्ट में उनका इलाज और मुआवजा किया गया। तो इस दौरान यात्रा भी 6वें दिन भी सस्पेंड ही रही, तो उम्मीद है कि इसमें कोई फाइनल डिसीजन लिया जाएगा। जैसा कि मालूम है कि 28 तारीख को यात्रा का आखिरी दिन है, जिस दिन पवित्र गुफा पर मतलब जहां पर आखिरी जो इसका जो मजहबी रसूमात अदा की जाएंगे, तो उसके बाद ये यात्रा अपने इख्तिताम को पहुंचेगी।
0: बहुत बहुत शुक्रिया तस्कीन विस्तार में जानकारी देने के लिए।
1: जी बहुत शुक्रिया।
0: श्रोताओं, ये थे मोहम्मद तस्कीन राष्ट्रीय राजमार्ग के अपडेट दे रहे थे। मौसमी सूरत हाल को देखकर जो है आज राष्ट्रीय राजमार्ग पर जो है अप डाउन कॉन्वाई चल रही है, हेवी मोटर व्हीकल्स, लाइट व्हीकल्स, टूरिस्ट्स को जो है दोनों तरफ से छोड़ा जा रहा है। तहम यात्रा को लेकर जो है अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है, तहम यात्रा को लेकर जो है अभी फ़िलहाल पूरी यात्रा जो है जम्मू से स्थगित की गई है। हालांकि श्रीनगर में जो है पवित्र छड़ी मुबारक का जो यात्रा का सफ़र है वो शुरू हो चुका है, और श्रीनगर में जो है इस यात्रा में साधु संत महंत और बाकी शिव भक्त जो है इस यात्रा के साथ जुट जाते हैं, और ये यात्रा जो है जारी है अपने पड़ाव को लेकर। जो है कल एक और पड़ाव इस यात्रा का होगा, कल जो है दशनामी अखाड़ा में जो है इस पवित्र छड़ी मुबारक को लेकर जो है एक खसूसी पूजा पाठ और हवन का जो है इतमाम किया जाएगा। उसके बाद जो है छड़ी मुबारक को पहलगाम की ओर लिया जाएगा। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में जो है छड़ी मुबारक को पहलगाम की ओर लिया जाएगा, और 22 अगस्त को जो है रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर छड़ी मुबारक को शिवजी के चरणों में अर्पण किया जाएगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। आकाशवाणी संरक्षण की सूचनाएं आप तक मुसलसल पहुंचाते रहेगा। बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए। अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।
2: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, सुबह के 9:25 हो चुके हैं, आइए अब समाचार सुनते हैं।

आदाब, ये आकाशवाणी श्रीनगर है। खबरों का बुलेटिन लेकर मैं तारिक अहमद। मुल्क भर में कल मनाए जाने वाले यूम आज़ादी के सिलसिले में तमाम तैयारियां मुकम्मल हैं और कौमी राजधानी में लाल किले में मुनक़द होने वाली सबसे बड़ी तकरीब के लिए भी स्टेज सेट है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी वंदे मातरम के 150 बरस और तरक्की याफ्ता भारत एट 2047 के लिए नए नौजवानों की कुव्वत के मौजू पर मुनक्कद होने वाली तकरीबात की क़यादत करेंगे। यौमे आज़ादी की तकरीबात के हिस्से के तौर पर पहली बार वंदे मातरम भी पेश होने जा रहा है। इधर जम्मू कश्मीर में भी जश्न आज़ादी की तकरीबात मनाने के लिए तमाम इंतजाम मुकम्मल हैं। यूटी में सबसे बड़ी तकरीब बख्शी स्टेडियम श्रीनगर में मुनक्कद होने जा रही है। तमाम ज़िला सदर मकामात पर भी 15 अगस्त की तकरीबात का शायान शान अहतमाम है। इसी दौरान कल जम्मू कश्मीर के सभी अजला में फुल ड्रेस रिहर्सल का इनेकाद हुआ। श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़दा फुल ड्रेस रिहर्सल के मौके पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग तमदनी प्रोग्राम पेश किए।

0: इस मौके पर सूबाई कमिश्नर कश्मीर अंशुल गर्ग ने परेड का मुआयना किया और मार्च पास्ट पर सलामी ली। अपने खिताब में उन्होंने कहा,
1: जितने भी हमारे स्टेक होल्डर डिपार्टमेंट्स हैं जो पिछले एक महीने से इस वेन्यू को तैयार करने के लिए 15 अगस्त के मौके को उसी तरीके से सेलिब्रेट करने के लिए जिस तरीके से हम हर बार करते आ रहे हैं, उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, ताकि 15 अगस्त को जब ऑनरेबल सीएम साहब फ्लैग को अनफर्ल करें तो उसी तरीके से उसी जोशो खरोश से हम सभी लोग इसके अंदर शिरकत करें जैसा हमेशा से करते आ रहे हैं। हमारे सभी पार्टिसिपेंट्स को, हमारे मीडिया से जो साथी जुड़े हैं, आप सभी का इस मौके पे हार्दिक स्वागत करता हूं और इस मंच से सभी को आमंत्रित करता हूं, श्रीनगर की आवाम को, कश्मीर की आवाम को, कि वो 15 अगस्त के इस इवेंट का हिस्सा बने।
0: योम आज़ादी से एक दिन कबल आज सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू कौम से खिताब करेंगी। उनका खिताब आकाशवाणी से आज शाम 7 बजे बराह रास्त नशर किया जाएगा। इस सिलसिले में आज हमारे यहां से शाम 7:30 बजे नशर होने वाला कश्मीरी खबरों का बुलेटिन शाम 6:30 बजे, जबकि 7:40 पर नशर होने वाला उर्दू बुलेटिन शाम 6:40 पर नशर किया जाएगा। इसी तरह से शाम 6:15 बजे नशर होने वाला कश्मीरी न्यूज़ बुलेटिन रात 8:30 बजे पेश किया जाएगा। ज़िला इंतजामिया श्रीनगर ने यौम आज़ादी की तकरीबात के जश्न के एक हिस्से के तौर पर कार्रवाई नुमाया अंजाम देने वाले कई सिविल और पुलिस अफसरों की इज्जत अफजाई की है। तकरीब में डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर अक्षय लाबरू, एसएमसी के कमिश्नर फजलुल हसीब और एसएसपी श्रीनगर संदीप चक्रवर्ती मौजूद थे, जिन्होंने अवामी खिदमत में नुमाया खिदमात अंजाम देने वाले मुतल्लिका अफसरों को तौसीफी असनाद और मेमेंटोस से नवाजा। बड़ी ब्रह्मणा इंडस्ट्रियल एसोसिएशन और फेडरेशन ऑफ इंडस्ट्रीज जम्मू के चेयरमैन तरुण सिंगला ने लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा से मुलाकात करके जम्मू डिवीजन में सनअती सेक्टर को मुस्तकम करने पर मौसूफा से तबादला ख्याल किया। उनके हमरा फेडरेशन ऑफ ट्रेड एंड इंडस्ट्री के कौमी सदर डॉक्टर संजय बंसल भी थे। इसी दौरान हेल्पलाइन ह्यूमैनिटी के बानी एमके भट्ट के क़यादत में एक वफद ने भी लेफ्टिनेंट गवर्नर से मुलाकात की, जिस दौरान उन्होंने मनोज सिन्हा को अपनी एनजीओ की सरगर्मियों के बारे में आगाह किया। सरकार ने चीफ मिनिस्टर डिजिटल इंटर्नशिप प्रोग्राम 2026 को मंजूरी दी है, जिसके जरिए बासलाहियत मुकामी नौजवानों को टेक्नोलॉजी और डिजिटल गवर्नेंस के उभरते हुए शोबों में तजुर्बा फराहम किया जाएगा। इस इकदाम से इंटर्न्स को गोटेक, साइबर सिक्योरिटी और डिजिटल सर्विसेज समेत मुख्तलिफ शोबों में सीखने के मौके फराहम होंगे। इस पहल के जरिए इंटर्न्स को सरकर्दा माहरीन की जानिब से मुनज़्ज़म रहनुमाई फराहम की जाएगी, जिससे उनकी तकनीकी सलाहियतों को मजबूत किया जाएगा। प्रोग्राम के तहत मुंतखब इंटर्न्स को 10,000 रुपये का माहाना वजीफा दिया जाएगा, जबकि बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले इंटर्न्स को वज़ीर-ए-आला की दस्तखत शुदा सनद भी दी जाएगी। चीफ सेक्रेटरी अटल डुल्लू ने सासकी के तहत तजवीज़ करदा मुराद से मुंसलिक तमाम असलाहत के नफाज के लिए तमाम ज़रूरी इकदाम करने की हिदायत दी है, ताकि रुकूमत की फराहमी के साथ साथ तामीराती और तरक्याती कामों की शुरुआत की जा सके और उनकी बरवक़्त तकमील यकीनी बनाई जा सके। श्रीनगर में रात का कम से कम दर्जा हरारत 21 डिग्री, जबकि जम्मू में रात का कम से कम दर्जा हरारत 25.2 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। इसके साथ ही खबरों का ये बुलेटिन खत्म हुआ। खुदा हाफिज।
2: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
3: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
2: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएस के आराधना चैनल, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वीव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोताओं, श्री अमरनाथ जी यात्रा छड़ी मुबारक का जो सिलसिला है वो शुरू हो चुका है। जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, इस वर्ष जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थयात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं, पवित्र गुफा पहुँचकर शिवलिंगम के दर्शन प्राप्त किए हैं। और इस बात में कोई दोराय नहीं है कि इस आंकड़े को पार करने में जो है स्थानीय नागरिक, राज्य सरकार, केंद्र सरकार और मुख्तलिफ जो विभाग है उन्होंने मिलकर जो है ये लक्ष्य पार करने में जो एक साथ मेहनत की है और मेहनत रंग लाई। और इस बात से भी हम नहीं कतरा सकते कि इस वर्ष जो है सभी शिव भक्त, सभी तीर्थयात्री सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से खुश दिखाई दे रहे थे। जहाँ जहाँ भी हमारे संवाददाताओं ने तीर्थयात्रियों से बात की, जिस भी जगह पर हमें तीर्थयात्रियों से बात करने का मौका मिला, उनसे मशवरा लेने का मौका मिला, उनकी ख्यालात विचार जानने का मौका मिला, तो इस ये बात साफ है कि हर एक शिव भक्त जो है सरकार द्वारा उठाए गए इकदाम से खुश और प्रसन्न दिखाई दे रहे थे। और इस इन खूबसूरत लम्हात और इस खूबसूरत यात्रा, इस पवित्र यात्रा को जो है वो यादगार लम्हात जो है वो अपने साथ लिए ज़रूर हुए होंगे। आपको याद दिलाते चले, आज जो है मुसलसल तीर्थ यात्रा जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से स्थगित की गई है। आज भी जो है किसी भी यात्री को घाटी की ओर रवाना नहीं किया जाएगा। तहम कल जो है 15 अगस्त के मौके पर जो है छड़ी मुबारक का एक और जो है पड़ाव शुरू हो जाएगा। मुख्य छड़ी यात्रा का प्रारंभ जो है वो 22 अगस्त को होगा। 22 अगस्त से जो है छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। इससे पहले जो कुछ एक प्रोग्राम्स रहते हैं वो श्रीनगर में रहते हैं और श्रीनगर के मुख्तलिफ मंदिरों में जो है हिस्टोरिकल मंदिर जो है वहाँ पर जो है खसूसी पूजा पाठ का आयोजन किया जाता है। तहम 22 अगस्त से जो है छड़ी मुबारक की मुख्य पवित्र यात्रा शुरू होगी। महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में पवित्र छड़ी को जो है अमरनाथ जी की गुफा की ओर ले जाया जाएगा। छड़ी मुबारक की यात्रा पारंपरिक पहलगाम मार्ग से ही आगे बढ़ेगी। इस वर्ष भी पहलगाम के जो है प्राचीन मार्ग है उसी मार्ग से जो है छड़ी मुबारक को पवित्र गुफा पहुंचाया जाएगा। 22 से 23 अगस्त को पहलगाम में विश्राम होगा। पहलगाम पहुंचने पर भक्तों के बीच भक्ति और शिव नाम का माहौल जो है हमें देखने को मिलेगा। 24 को चंदनवाड़ी में जो है विश्राम होगा। यही से यात्रा और भी कठिन पहाड़ी क्षेत्रों की ओर बढ़ेगी। 25 अगस्त को छड़ी मुबारक शेषनाग पहुंचेगी। शेषनाग के आध्यात्मिक और प्राकृतिक वातावरण में जो है भक्तों के लिए यहाँ ये पड़ाव जो है विशेष महत्व रखता है। 26 और 27 अगस्त पंचतरणी में दो रात का जो है विश्राम होगा। दो रातों को जो है छड़ी मुबारक का विश्राम होगा पंचतरणी में। पंचतरणी से पवित्र अमरनाथ गुफा का अंतिम चरण शुरू होता है। यहाँ से हर भक्त के मन में एक ही आस होती है, बाबा बर्फानी की दिव्य दर्शन। 28 अगस्त पवित्र गुफा में छड़ी मुबारक पहुँच जाएगी और फिर आता है वो पवित्र दिन जिसका हर शिव भक्त बेसब्री से इंतज़ार करता है। 28 अगस्त यानी रक्षाबंधन के पवित्र अवसर पर जो है छड़ी मुबारक को श्री अमरनाथ जी की पवित्र गुफा में पहुँचाया जाएगा। गुफा में विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की जाएगी और बाबा बर्फानी के चरणों में श्रद्धा अर्पित की जाएगी। इसी के साथ जो है श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का पवित्र समापन भी होगा। छड़ी मुबारक का ये पवित्र की ये जो यात्रा है हमें केवल भगवान शिव के दर्शन के अवसर नहीं देती, बल्कि हमें श्रद्धा, संयम, सेवा और एकता का संदेश भी देती आ रही है। आकाशवाणी क्षण-क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग। विशेष प्रसारण आप FM बालतल 103.7 MHz, पहलगाम के प्राचीन मार्ग पर FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आराधना चैनल पर सुन सकते हैं, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की YouTube चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज़, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़। देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच के माध्यम से सुन पा रहे हैं। आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के आराधना चैनल, आकाशवाणी के मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध हैं। श्रोता, आपको याद दिलाते चले, इस वर्ष की यात्रा में जो है 4.5 लाख से अधिक तीर्थ यात्रियों ने शिव जी के दर्शन प्राप्त किए हैं। तमाम कुछ एक दिनों से जो है कई एक कारणों को लेकर जो है यात्रा फिलहाल के लिए स्थगित की गई है। ताहम छड़ी मुबारक का जो यात्रा का सफ़र है वो शुरू हो चुका है। कल जो है श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा में श्री अमरीश्वर मंदिर में जो है छड़ी मुबारक की खसूसी पूजा की जाएगी। आकाशवाणी क्षण क्षण की सूचनाएं आप तक पहुंचाते रहेगा। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH के माध्यम से आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR तथा आकाशवाणी की YouTube चैनल आराधना पर भी आप हमें सुन पा रहे हैं। श्रोतो, श्री अमरनाथ जी यात्रा 2024 अपने आखिरी चरणों में है। श्री अमरनाथ जी यात्रा से जुड़ी छड़ी मुबारक की पवित्र यात्रा जो है श्रीनगर से शुरू हुई है। कल श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा स्थित अमरेश्वर मंदिर में जो है खसूसी पूजा पाठ का आयोजन किया जाएगा। श्रोता, अमरनाथ यात्रा सिर्फ एक धार्मिक यात्रा ही नहीं है, बल्कि ये भक्ति, तपस्या, साहस और अध्यात्म का अनोखा संगम है। कहा जाता है कि इस पवित्र अमरनाथ गुफा में जो है भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर कथा का रहस्य सुनाया था, इसी वजह से पवित्र धाम को अमरनाथ कहा जाता है। जब श्रद्धालु बम बम बोले और हर हर महादेव के जयकारे लगाते हुए हिमालय की कठिन चढ़ाई पर आगे बढ़ते हैं, तो हर कदम के साथ उनकी आस्था और भी गहरी होती जाती है। रास्ते की मुश्किलें, थकन, ठंडी और पहाड़ों की कठिन चढ़ाई, लेकिन बाबा बर्फानी के दर्शन की आसनीन सभी मुश्किलों को हकीकी मान

क्षणों में पीछे छोड़ देती है। पहलगाम के प्राचीन मार्ग इसी मार्ग से जो है ज्यादा श्रद्धालु पवित्र गुफा पहुंचने की कोशिश करते हैं। पहलगाम मार्ग प्रतीक सुंदर और पारंपरिक यात्रा के लिए हर वर्ष जाना जाता है, जबकि बालतल मार्ग अपनी तुलनात्मक रूप से छोटी लेकिन कठिन चढ़ाई के लिए प्रसिद्ध है। यात्रा के दोनों मार्गों पर जो है जगह जगह पर लंगर सेवा सहायता स्थानीय नागरिक प्रशासन के अधिकारी सब मिलकर ये कोशिश करते हैं कि सभी तीर्थ यात्रियों की ये जो यात्रा है पवित्र यात्रा है ये सफ़र जो है उनके लिए यादगार बने और इन लम्हात को जो है वो अपने साथ लिए जाए। इस कोशिश में मिलकर सभी अपना योगदान देते हैं। जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से लेकर पवित्र गुफा तक जगह जगह पर यात्रियों की सहूलत के लिए हर वक्त आपकी सेवा के लिए स्थानीय नागरिक प्रशासन के अधिकारी मिलकर जो है आपकी सेवा में लगे होते हैं। कोशिश यही होती है कि देश के विभिन्न भागों से आए हुए सभी शिव भक्तों के लिए जो है ये सफ़र यादगार बनाया जाए। आकाशवाणी की भी पहले दिन से यही कोशिश है कि हम आपकी इस यात्रा में शरीक रहे। यात्रा से जुड़ी हर एक महत्वपूर्ण जानकारी आप तक पहुँचाए, क्षण क्षण की सूचनाएँ आप तक पहुँचाए, ताकि आपकी यात्रा सफल सुखद और मंगलमय हो। ईश्वर से यही प्रार्थना कि सभी शिव भक्त को जो है खुश और प्रसन्न रखे, यही हमारी मनोकामना है। आकाशवाणी क्षण क्षण आपके साथ है, आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट

0: ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
1: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम एक महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग, विशेष रूप से प्राणायाम शुरू कर देना चाहिए।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज पहलगाम के प्राचीन मार्ग से। आप हमें एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज देश के विभिन्न भागों में आप हमें डीटीएच की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप, न्यूज़ ऑन एआईआर तथा आकाशवाणी के ओटीटी प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी हम उपलब्ध है। आप बने रहिए आकाशवाणी के इस विशेष प्रसारण के संग।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz। देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना सर्विस, आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन AIR, आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स के अलावा आप हमें आकाशवाणी की यूट्यूब चैनल आराधना पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोताओ, दिन के 12 बजने वाले हैं, कुछ ही पलों में आपके लिए समाचार पेश करेंगे।

नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगे। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सरकार ने स्वाधीनता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10

0: मिनट पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के एफएम गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
1: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
0: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है तथा सीबीआई जांच और झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल परीक्षा रद्द करने की अपनी मांग को दोहराया है। प्रदर्शनकारियों ने अपने आंदोलन को और मजबूत करने के लिए कल तिरंगा यात्रा निकालने की भी घोषणा की है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनर्स्थापित करना तथा क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। घरेलू शेयर बाजार के प्रमुख सूचकांक आज सुबह के सत्र में लगभग 0.5% नीचे कारोबार कर रहे थे। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 326 अंक गिरकर 77,754 पर और निफ्टी 73 अंक गिरकर 24,323 पर आ गया। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़ में मूसलाधार वर्षा का रेड अलर्ट जारी किया है। पश्चिम बंगाल के गांगेय क्षेत्रों, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, ओडिशा और उत्तराखंड में भी वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।

श्री अमरनाथ यात्रा 2026 का विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, देश के विभिन्न भागों में आप हमें DTH की आराधना चैनल पर सुन सकते हैं। इसके अलावा आप हमें आकाशवाणी की मोबाइल ऐप न्यूज़ ऑन एयर तथा आकाशवाणी के OTT प्लेटफॉर्म वेव्स पर भी सुन पा रहे हैं। श्रोता कुछ क्षणों में हमारी सहयोगी आपके साथ इस विशेष प्रसारण में जुड़ जाएगी। आप बने रहिए इस विशेष प्रसारण के संग।

0: यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: यात्रा मार्ग में बार बार बारिश होती है और तापमान में अचानक गिरावट आती है, जो कभी कभी 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे भी जा सकता है। इसलिए यात्रियों को यात्रा के दौरान जैकेट, ऊनी मोजे, मफलर, रेनकोट, छाता और विंड चीटर लाने की सलाह दी जाती है।
0: उच्च स्तर की शारीरिक फिटनेस प्राप्त करके यात्रा की तैयारी करें। आपको सलाह दी जाती है कि यात्रा से कम 1 महीने पहले 4-5 किलोमीटर सुबह या शाम की सैर जरूर करें। अपने शरीर की ऑक्सीजन क्षमता में सुधार के लिए आपको गहरी सांस लेने के व्यायाम और योग

0: अमरनाथ यात्रा पर जाने वाले श्रद्धालुओं के लिए कुछ खास जानकारी।
1: महिलाओं के लिए साड़ी यात्रा के लिए उपयुक्त पोशाक नहीं है। सलवार कमीज, पैंट शर्ट या ट्रैक सूट बेहतर रहेगा। 6 सप्ताह से अधिक गर्भवती महिलाओं को तीर्थ यात्रा करने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
0: यात्रा के दौरान उपयोग के लिए पानी की बोतल, मेवे, भुने हुए चने, टॉफी, गुड़, चॉकलेट आदि साथ जरूर रखें। अपने हाथों और चेहरे को सनबर्न से बचाने के लिए कुछ कोल्ड क्रीम, वैसलीन या सनस्क्रीन साथ रखें।
2: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियो, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: नमस्कार, आकाशवाणी समाचार के साथ मैं कनकलता। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे। सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली से प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के 100 लाभार्थियों को लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष मेहमान के रूप में आमंत्रित किया है। सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय MSME ने कहा कि समारोह में प्रधानमंत्री विश्वकर्मा लाभार्थियों की भागीदारी भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत में पारंपरिक कारीगरों और शिल्पकारों के अनमोल योगदान को मान्यता देने जैसा है। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदक की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं। कुल 92 राष्ट्रपति पदकों और 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो CBI के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सामल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। तमिलनाडु में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए व्यापक तैयारियां की गई हैं। बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के फोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। तमिलनाडु पुलिस की अलग अलग इकाइयों ने आई फुल ड्रेस रिहर्सल की। संवेदनशील इलाकों में यातायात का मार्ग बदला गया है। स्वाधीनता दिवस समारोह के मद्देनजर दिल्ली यातायात पुलिस ने राष्ट्रीय राजधानी में लाल किले के आसपास आने जाने वाले यात्रियों के लिए यातायात संबंधी परामर्श जारी किया है। ये सुबह 4 बजे से दिन के 10 बजे तक प्रभावी रहेगा। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, अतिरिक्त समय लेकर चलें। इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वाधीनता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री मोदी ने कामना की कि यह दिन सद्भाव और भाईचारे को बनाए रखने के हमारे संकल्प को और मजबूत करेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले के लालगोला पुलिस स्टेशन के अंतर्गत बलिग्राम इलाके से पुलिस ने 7 संदिग्ध बांग्लादेशी नागरिकों को हिरासत केंद्र में भेज दिया है। इन 7ों को कल हिरासत में लिया गया था। आरोप है कि वे कुछ महीने पहले भारत बांग्लादेश सीमा के रास्ते अवैध रूप से भारत में दाखिल हुए थे और बाद में काम की तलाश में दक्षिण भारत चले गए थे। घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। ताजा समाचार मिलने तक सेंसेक्स 261 अंक गिरकर 77,819 पर और निफ्टी 60 अंक गिरकर 24,336 पर आ गया। इसके साथ ही ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।
1: दिस इज आकाशवाणी द न्यूज रेड बाय वल्सा विलियम्स। The nation will celebrate the 80th Independence Day tomorrow. Prime Minister Narendra Modi will lead the celebrations from the iconic Red Fort in Delhi. Flower petals will be showered at the venue by two Mi-17 helicopters of the Indian Air Force. After the showering of flower petals, the Prime Minister will address the nation from the ramparts of the Red Fort. More from our correspondent.
2: The grand event is set to commemorate 150 years of the enduring legacy of the national song Vande Mataram and celebrate the energy, aspirations and pivotal contribution of Yuva Shakti in driving India's journey towards Viksit Bharat by 2047. For the first time, Vande Mataram will be rendered during the celebrations at Red Fort. Around 5,000 special guests from different walks of life have been invited to witness the celebrations at Red Fort. These include artisans under PM Vishwakarma scheme, women entrepreneurs under PM Mudra Yojana, street vendors under PM Swanidhi and taxi drivers of Bharat Taxi. Delhi police has also made elaborate security arrangements in the national capital. With Dipendra, Anand Kumar, Akashwani News, Delhi.
1: Today is Partition Horrors Remembrance Day. Prime Minister Narendra Modi, Home Minister Amit Shah and Defence Minister Rajnath Singh have paid homage to all those who lost their lives and to those who struggled against the atrocities during the partition in 1947. In a social media post, Mr. Modi termed the partition as a moment in history that tore apart several lives, where families were uprooted, loved ones were lost, and immense suffering was endured. The Prime Minister also wished that the day deepens everyone's resolve to preserve harmony and brotherhood in the country and collectively work towards building a Viksit Bharat. The government has invited 100 beneficiaries of PM Vishwakarma from the Delhi NCR region as special guests to witness the 80th Independence Day ceremony at the Red Fort in Delhi. The Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises informed the beneficiaries will also be presented with souvenirs as a token of recognition and appreciation, followed by an interaction with officials of the Ministry of MSME today. The government has announced gallantry and service medals for 1,057 personnel of the police, fire services, home guard and civil defence and correctional services on the occasion of Independence Day tomorrow. The Ministry of Home Affairs today released the list of 301 medals for gallantry, including 272 for police personnel and 29 for fire service personnel. President Draupadi Murmu will address the nation today on the eve of the 80th Independence Day. The President's address will be broadcast

एफएम बालतल 103.7 मेगाहर्ट्ज, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच और न्यूज ऑन एयर एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। श्रोताओं, जैसा कि आप जानते हैं कि छड़ी मुबारक का गुफा तक का सफर जो है वो शुरू हो चुका है, और 12 अगस्त 2026 की अगर बात करें तो पवित्र छड़ी मुबारक को विशेष पूजा के लिए ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर ले जाया गया।

0: सचिवरणं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वे विघ्नोपशान्तये अभिसिद्ध्यर्थ सिद्ध्यर्थं पूजितो यासुरासुरे
1: देवी तस्मै श्रीगणाधिपतये नमः
0: भगतुण्ड महाकाय सूर्यकोटे
1: समप्रभं निर्विघ्नम्
0: ॐ घ्रे

0: गंगे चैमने चैवा गोदावरी सरस्वती नर्मदा सिंधु कावेरी जलस्मिन् सन्नतं कुरुः भूर्वस्वः भगवते सां सदाशिवाय समर्पयामि गंगा जलम स्नानम समर्पयामि महाभिषेकः। बाल्टी के नीचे रख के
1: ऐसे
0: नहीं, गड़बी से लेके एक गड़बी

चंदनम समर्पयामि गंधद्वारां दुराधर साम नित्य पुष्टां गरीशणे ईश्वरीं सर्वभूतानां धामि हो बब्बये श्रियं गंगणपतये नमाम्यहम् वस्त्रोपवस्त्रं महासमर्पयामि।

0: शंकराचार्य महाराज की, शंकराचार्य महाराज की, ज्येष्ठा माता के, सारिका माता के, खीर भवानी माता के, समस्त देवी देवताओं की, महंत दीपेंद्र गिरि महाराज की, धर्म की
1: जय हो,
0: धर्म की
1: जय हो,
0: अधर्म का
1: विनाश हो,
0: प्राणियों में
1: सद्भावना हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: विश्व का
1: कल्याण हो,
0: गौ माता की
1: जय हो,
0: कालरा कष्टरा दुखरा दारिद्ररा सर्व पापहरो भव हर हर। जयकार वीर बजरंगी, जयकार वीर बजरंगी, जयकार वीर बजरंगी, नमः पार्वती बनाई
2: शिव शंभु।
3: श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे पवित्र छड़ी मुबारक के विशेष पूजा की, जो कि 12 अगस्त को ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में की गई।

आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं एफएम बालतल 103.7 एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज़ डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, अब हम आपको लिए चलेंगे आकाशवाणी दिल्ली के स्टूडियोज, जहां से आप समाचार सुनेंगे।

0: आदाब, ये आकाशवाणी है। खबरों के साथ मैं फैसल खान। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें योम आजादी के मौके पर आज शाम कौम से खिताब करेंगी। वजीर आजम नरेंद्र मोदी कल दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आजादी की तकरीबात में कौम की क्यादत करेंगे। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन मनाया जा रहा है। वजीर आजम, वजीर दाखिला और वजीर दिफा ने उन लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थी। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और छत्तीसगढ़, मशरकी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज बहुत शदीद बारिश के लिए अलर्ट जारी किया है। अब खबरें तफसील से। सदर जमहूरिया द्रौपदी मुर्मू 80वें योम आजादी से कबल आज शाम मुल्क के लोगों से खिताब करेंगी। सदर जमहूरिया का यह खिताब आकाशवाणी के पूरे कौमी नेटवर्क पर शाम 7 बजे से नशर किया जाएगा। दूरदर्शन के सभी चैनलों पर पहले यह खिताब हिंदी में टेलीकास्ट किया जाएगा और उसके बाद अंग्रेजी में होगा। दूरदर्शन पर हिंदी और अंग्रेजी में इस खिताब के टेलीकास्ट के बाद दूरदर्शन के इलाकाई चैनलों पर इसे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। इधर आकाशवाणी से भी सदर जमहूरिया का यह खिताब मुतालिका इलाकाई नेटवर्क पर रात 9:30 बजे इलाकाई जबानों में नशर किया जाएगा। कल पूरे मुल्क में 80वां योम आजादी मनाया जाएगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी दिल्ली में तारीखी लाल किले से योम आजादी की तकरीबात की क्यादत करेंगे। कौमी परचम लहराने के साथ साथ 21 तोपों की सलामी दी जाएगी। इस मौके पर भारतीय फिजाइया के 2 हेलीकॉप्टर फूलों की पत्तियां बरसाएंगे जिसके बाद वजीर आजम लाल किले की फसील से कौम से खिताब करेंगे। मजीद तफसील हमारे नामनिगार से।
1: इस अजीम शान तकरीब के साथ साथ कौमी गीत वंदे मातरम की शानदार विरासत के 150 साल मुकम्मल होने और 2047 तक विकसित भारत की समत भारत के सफर को आगे बढ़ाने में युवा शक्ति की तवानाई, उमंगों और उनके ग्रां कद्र ताबुन का जश्न भी मनाया जाएगा। लाल किले पर तकरीबात के दौरान पहली मरतबा वंदे मातरम गाया जाएगा। एनसीसी के कैडेट्स और माई भारत के रजाकार पहले कौमी गीत वंदे मातरम और फिर कौमी तराना गाएंगे। फौज, बहरिया और भारतीय फजाइया के 2500 लड़के लड़कियां और माई भारत के रजाकार इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। इनके अलावा जिंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले तकरीबन 5000 खसूसी मेहमानों को भी लाल किला तकरीबात का नजारा करने की दावत दी गई है। दिल्ली पुलिस ने इस मौके पर कौमी राजधानी में सिक्योरिटी के वसी इंतजाम किए हैं। मुख्तलिफ एजेंसियों के

तकरीबन 15,000 सिक्योरिटी एहलकारों को भी तैनात किया गया है। लाल किला और उसके आसपास 1,000 CCTV कैमरे नस्ब किए गए हैं। इसके अलावा शहरियों में हुब्बुल वतनी के जज्बे को फरोग देने और यौम आज़ादी का जश्न मनाने की गरज से मुल्क भर में 343 अहम मकाम पर बहुत से बैंड्स अपने फन का मुजाहरा करेंगे। नई दिल्ली से दीपेंद्र कुमार की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।

0: ने दिल्ली के लाल किले पर योम आज़ादी की 80वें तकरीब का नज़ारा करने के लिए खसूसी मेहमानों की हैसियत से दिल्ली NCR खत्ते से PM विश्वकर्मा के 100 मुस्तफेदीन को मधु किया है। बहुत छोटी छोटी और औसत दर्जे की सनातों की वजारत ने बताया कि इन मुस्तफेदीन को आज MSMEs की वजारत के अफसरों के साथ बातचीत के बाद कद्र शनासी और कद्रदानी के अलामत के तौर पर सुवेनियर भी पेश किए जाएंगे। मधु किए गए मुस्तफेदीन में दर्जी, कारपेंटर, सोनार, लोहार, तालासाज समेत PM विश्वकर्मा के तहत आने वाले 18 रिवायती कारोबार की नुमाइंदगी करते हैं। मरकज के जेर इंतजाम इलाके जम्मू कश्मीर में योम आज़ादी की तकरीब के सिलसिले में मुनासिब तैयारियां मुकम्मल कर ली गई हैं, ताकि पुरमन और खुश उसलूबी से योम आज़ादी तकरीबात को यकीनी बनाया जा सके। शहरी इंतजामिया की तरफ से दीगर जरूरी तैयारियां और इंतजाम के साथ सभी मकाम पर सिक्योरिटी के कसीर सतही इंतजाम किए गए हैं। पेश है एक रिपोर्ट।
1: इस साल यौम आज़ादी की तकरीबात के मौके पर पूरे कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा यात्राएं निकाली जाएंगी और हुब्बुल वतनी से मुतालिक सरगर्मियां अंजाम दी जाएंगी। श्रीनगर से टीटवा में लाइन ऑफ कंट्रोल तक तिरंगा रैलियां और हुब्बुल वतनी के नगमे इन तकरीबात का खास हिस्सा होंगे। इस दौरान मरकज के जेर इंतजाम इस पूरे इलाके में कसीर सतही सिक्योरिटी इंतजाम किए गए हैं। खास तकरीब श्रीनगर के बख्शी स्टेडियम में मुनक़द की जाएगी, जहां वजीर आला उमर अब्दुल्ला मेहमान खसूसी की हैसियत से इस तकरीब में शिरकत करेंगे। न्यूज डेस्क से उर्दू खबरों के लिए मैं अब्दुल मालिक।
0: ये खबरें आकाशवाणी से नशर की जा रही हैं। आज मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद का दिन है। आज उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जा रहा है जिन्होंने 1947 में मुल्क की तकसीम के दौरान नाकाबिले तसव्वुर दुख और तकलीफ का सामना किया और अपनी जान कुर्बान कर दी। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, वज़ीर दाखिला अमित शाह और वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने उन सभी लोगों को खराज अकीदत पेश किया जिन्होंने मुल्क की तकसीम के दौरान अपनी जानें कुर्बान की थीं और जिन्होंने मुल्क की तकसीम की हौलनाकी की याद के दिन के मौके पर जुल्म व सितम के खिलाफ जद्दोजहद की थी। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने मुल्क की तकसीम को तारीख में एक ऐसा लम्हा करार दिया जिसमें बहुत से जानें कुर्बान हुईं, जहां बहुत से कुंबे उजड़ गए, लोगों के अजीज व अकारीब की जानें गईं और जबरदस्त तकालीफ और मुसीबत का सामना किया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ड्रोन्स और उनके कलपुर्जों की दरामद पर 100% तक के नए महसूल का ऐलान किया है और कहा है कि इस कदम का मकसद मजकूरा सनअत में गैर मुल्की सप्लायर्स पर अमरीका का इन्हिसार कम करना है, जबकि बड़ी हद तक इस सनअत में चीन का गलबा है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक कौमी सलामती वजूहात से यह फैसला किया गया है। व्हाइट हाउस के एक बयान के मुताबिक यह फैसला कौमी सलामती की बुनियादों पर किया गया है। मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि मनुष्यात की रोकथाम के ब्यूरो NCB ने मुत्तहदा अरब अमारात से मनुष्यात के मफरूर सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया की मुल्क वापसी और हवालगी को यकीनी बना लिया है। उन्होंने कहा कि यह मनुष्यात के खिलाफ कतई बर्दाश्त न करने की हुकूमत की पॉलिसी में एक नए संग मील की हैसियत रखता है। झारखंड के रांची में एहतजाज करने वाले तलबा आज 21वें दिन भी सरकारी भर्तियों में शफाफियत की मांग कर रहे हैं। जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में इस मुजाहरे के दौरान तलबा लीडरों और हुकूमत के दरमियान तातुल में इजाफा हो गया है। पेश है एक रिपोर्ट।
2: पिछले 3 हफ्तों से रांची में जारी तलबा का एहतजाज अब एक हसास मरहले में दाखिल हो गया है। तलबा के लीडर देवेंद्र नाथ महतो ने जो भूख हड़ताल की वजह से अस्पताल में दाखिल है एक वीडियो मैसेज जारी किया है जिसमें वो तहरीक को मजबूत और जारी रखने की अपील कर रहे हैं। खराब सेहत के बावजूद उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कुछ लोग तहरीक को कमज़ोर करने और उसे किसी और सम्त में मुंतकिल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी दौरान हुकूमत के एक वजीर की तरफ से तलबा के वफ्द की सदाकत पर सवाल उठा जाने के बाद तलबा के लीडर रविंद्र पासवान ने रद्दअमल जाहिर किया है। उन्होंने कहा है कि वफ्द के सभी अरकान सही हैं और सच्चे हैं। इस दौरान मुमताज़ माहिर तालीम अलका पांडे ने तलबा के एहतजाज की हिमायत में जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम का दौरा किया। रांची से पूनम करकेटा की रिपोर्ट के साथ उर्दू खबरों के लिए मैं हुसैन अख्तर।
0: जम्मू कश्मीर में हुकूमत ने 18 करोड़ 60 लाख रुपए मालियत के विरासत के तहफ़ के 3 बड़े प्रोजेक्टों को मंजूरी दे दी है। इनका मकसद तारीखी और सकाफती लिहाज से अहमियत के हामिल मकामात की अजमत को बहाल करना और खित्ते के विरासती सियाहती मकामात को मुस्तहकम बनाना है। जुनूब मगरबी मानसून आज से हिमाचल प्रदेश के बहुत से हिस्सों में एक बार फिर सरगर्म हो गया है। आज सुबह से

0: India was secured through sustained coordination with the UAE authorities by Indian agencies. Mr. Shah said this marks a new milestone in the government's policy of zero tolerance against narcotics. In a social media post, Mr. Shah said the Narendra Modi government is relentlessly tracking down drug traffickers hiding abroad and destroying their entire ecosystem with a ruthless approach. The Office of the Registrar General of India under the Ministry of Home Affairs has notified the questionnaire for the household schedule for the census 2027. The questionnaire has a list of 40 questions. This included parents' details, Aadhaar, mobile number, total number of bank accounts, travel to place of work, religion and caste. The census remains a vital tool for governance, providing a foundation for India's development planning for the next decade. The last census was conducted in 2011. The National Human Rights Commission has issued notice to the Union Home Secretary and Director General, Central Reserve Police Force, CRPF, over the reported death of 19 CRPF personnel by suicide between January to May this year. Taking suo motu cognizance of the incident, the Commission has called for a detailed report on the matter within 2 weeks. According to a media report, a total of 281 CRPF personnel died by suicide in the last 5 years. The student protest in Ranchi, Jharkhand, demanding transparency in government recruitment, continues for the 21st day today. Amidst the demonstration at Jaipal Singh Munda Stadium, a standoff between student leaders and the government has intensified. Here is a report.
1: The ongoing student protest in Ranchi for the past 3 weeks has now reached a sensitive phase. Student leader Devendranath Mehto, who was admitted in the hospital after illness due to a hunger strike, released a video message appealing to keep the movement strong and ongoing. Meanwhile, after minister questioned the authenticity of the student delegation, student leader Ravindra Paswan hit back. He stated that all members of the delegation are genuine students and have admit cards as proof. To exert pressure on the government and demonstrate their rock-solid unity, the students have announced a grand Tiranga march tomorrow on the occasion of Independence Day. For Akashwani News, Poonam Kerketa from Ranchi.
0: The Intermeteorological Department, IMD, has issued an orange colour warning for heavy to very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. Heavy rainfall conditions are also likely to prevail over Delhi, Haryana, Chandigarh, Punjab, West Madhya Pradesh, Madhya Maharashtra, Odisha, Vidarbh, Sub-Himalayan, West Bengal and northeastern parts of India during the next 2 days. The southwest monsoon has once again become active in several parts of Himachal Pradesh from today, with heavy rainfall being reported in some areas since morning. Torrential rains in several districts have led to a rise in the water levels of rivers and streams. The administration has urged people to exercise caution. A report.
2: The Meteorological Center Shimla has issued an orange alert for heavy rainfall in several areas of Mandi and Sirmaur districts today. A yellow alert for heavy rainfall has also been issued for isolated places in Kangra, Chamba, Bilaspur and Una districts. Meanwhile, the Chamba district administration has advised devotees undertaking the famous Mani Mahesh Yatra to proceed only when weather conditions are favorable. According to the State Emergency Operations Center, 140 roads are currently blocked due to landslides, 46 power transformers, while 244 drinking water supply schemes have also been disrupted. Besides, 177 people have so far lost their lives in rain-related incidents in Himachal Pradesh during the current monsoon season. Ritesh Kapoor, Akashwani News, Shimla.
0: In Odisha, 2 days of incessant rain have triggered a fresh flood threat in northern parts of the state, with several rivers swelling rapidly and crossing danger levels. More from our correspondent.
3: The flood situation on the ground is grim in several parts of northern Odisha. Flood water is spreading into low-lying areas, roads are submerged and swollen rivers are cutting off connectivity. The Baitarani is flowing above the danger mark at Anantpur and Patna in Keonzhar district, while the Jalaka at Mathani in Baleswar district is flowing at 7.84 meters against the danger level of 6.50 meters. Flood water has again entered through a breach in the Anantpur ring embankment. Joda and Balwil in Keonzhar district are also waterlogged. In Mayurbhanj, the Budha Balanga has spilled into parts of Baripada, while several roads are underwater. The Subarnarekha and Baitarani rivers are above danger levels. With more rainfall forecast, residents in low-lying and riverbank areas have been advised to remain alert. Prakash Das for Akashvani News, Bhubaneswar.
0: And now before we end the bulletin, the headlines once again. President Draupadi Murmu to address the nation on the eve of 80th Independence Day. Prime Minister Narendra Modi to lead the nation in Independence Day celebrations from the iconic Red Fort in Delhi tomorrow. Partition Horrors Remembrance Day being observed today. Prime Minister, Home Minister and Defence Minister pay homage to all those who lost their lives during partition. India dispatches first tranche of 20 metric ton relief supplies to Colombia to support ongoing post-earthquake recovery efforts. And alert issued for very heavy rainfall over Chhattisgarh, East Madhya Pradesh, Himachal Pradesh, Jharkhand, Uttar Pradesh and Uttarakhand today. With that, we end the midday news.
4: नमस्कार आकाशवाणी से दोपहर समाचार के साथ मैं प्रियंका अरोड़ा। मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनर्निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 80वां स्वाधीनता दिवस मना रहा है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। राष्ट्रपति का संबोधन शाम 7 बजे आकाशवाणी के सभी राष्ट्रीय चैनलों पर प्रसारित किया जाएगा। ये दूरदर्शन के सभी चैनलों पर भी प्रसारित होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। हमारे संवाददाता ने बताया है कि समारोह स्थल पर भारतीय वायुसेना के 2 MI-17 हेलीकॉप्टर पुष्प वर्षा करेंगे।
5: लाल किले में होने वाले इस समारोह में पहली बार वंदे मातरम का सामूहिक गायन किया जाएगा। इसके बाद राष्ट्रगान होगा। यह भव्य कार्यक्रम राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम की 150 साल पुरानी गौरवशाली विरासत को याद करने और वर्ष 2047 तक विकसित भारत के निर्माण में युवा शक्ति की ऊर्जा, आकांक्षाओं और महत्वपूर्ण योगदान का उत्सव मनाने के लिए आयोजित किया जा रहा है। इस समारोह में सेना, नौसेना और वायुसेना के करीब 2500 कैडेट और माई भारत के स्वयंसेवक हिस्सा लेंगे। इस समारोह में देश के अलग अलग क्षेत्रों से करीब 5000 विशेष अतिथियों को भी लाल किला में आमंत्रित किया गया है। इनमें पीएम विश्वकर्मा योजना के कारीगर, पीएम मुद्रा योजना की महिला उद्यमी, पीएम स्वनिधि योजना के रेहड़ी पटरी वाले और भारत टैक्सी के टैक्सी चालक शामिल हैं। दिल्ली पुलिस ने समारोह को लेकर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए हैं। विभिन्न सुरक्षा एजेंसियों के करीब 15,000 जवानों को तैनात किया गया है और 1,000 CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इसके अलावा देशवासियों में देशभक्ति की भावना को बढ़ाने के लिए देश भर में 343 प्रमुख स्थानों पर प्रस्तुतियां भी आयोजित की जा रही हैं। दीपेंद्र कुमार, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली।
4: इस बीच दिल्ली मेट्रो रेल निगम ने लाल किले में स्वतंत्रता दिवस समारोह में शामिल होने वाले विशेष अतिथियों और आम जनता की आवाजाही के लिए विस्तारित मेट्रो सेवाओं की घोषणा की है। यात्री सुबह 4 बजे से लाल किला, जामा मस्जिद और दिल्ली गेट मेट्रो स्टेशनों पर उतरकर लाल किले तक पहुंच सकते हैं। सरकार ने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर पुलिस, अग्निशमन सेवा, होमगार्ड और नागरिक सुरक्षा तथा सुधार सेवा के 1,057 कर्मियों को वीरता और सेवा पदक देने की घोषणा की है। एक रिपोर्ट।
6: गृह मंत्रालय ने आज वीरता के 301 पदकों की सूची जारी की। इनमें पुलिस कर्मियों के लिए 272 और अग्निशमन सेवा के कर्मियों के लिए 29 पदक शामिल हैं। वीरता पदक जीवन और संपत्ति की रक्षा, अपराध रोकने या अपराधियों को पकड़ने में उल्लेखनीय साहस दिखाने के लिए प्रदान किया जाता है। 301 वीरता पदकों में से वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के 197 कर्मी, जम्मू कश्मीर के 51 तथा पूर्वोत्तर के 12 और अन्य क्षेत्रों के 41 कर्मी शामिल हैं।

0: विशिष्ट सेवा के लिए कुल 92 राष्ट्रपति पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 83, अग्निशमन सेवा के 4, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 3 तथा सुधार सेवा के 2 पदक शामिल हैं। इसके अलावा 664 सराहनीय सेवा पदकों की भी घोषणा की गई है। इनमें पुलिस सेवा के 606, अग्निशमन सेवा के 28, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड सेवा के 18 तथा सुधार सेवा के 12 कर्मी शामिल हैं। अंकित की रिपोर्ट के साथ समाचार कक्ष से मैं मनोज।
1: केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई के 21 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक तथा सराहनीय सेवा के लिए पदक प्रदान किए जाने की भी घोषणा की गई है। 6 अधिकारियों को विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पदक दिया जाएगा। इनमें सहायक पुलिस महानिरीक्षक शोभा दत्ता, अपर पुलिस अधीक्षक मनोज बैनर्जी, अपर पुलिस अधीक्षक गिन्नी राणा और पुलिस उपाधीक्षक संजय कुमार सांबल शामिल हैं। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज शाम 5:10 पर सैनिकों को संबोधित करेंगे। उनका संबोधन आकाशवाणी के FM गोल्ड और इंद्रप्रस्थ चैनल पर प्रसारित होगा। देश भर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए विशेष तैयारियां की गई हैं। जम्मू कश्मीर से हमारे संवाददाता ने बताया है कि स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सभी प्रमुख आयोजन स्थलों पर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं।
2: शहरों से लेकर सरहदी इलाकों तक इस साल पूरे जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर तिरंगा रैलियां और देशभक्ति से जुड़े कार्यक्रम आयोजन किए गए। श्रीनगर में डल झील के किनारे निकाली गई मेगा तिरंगा यात्रा हो या लाइन ऑफ कंट्रोल के नजदीक रैलियां, वुलर झील के किनारे 2 किलोमीटर लंबे तिरंगे की नुमाइश हो या डल और मानसबल झीलों में राष्ट्रीय ध्वज लहराती हुई शिकारा रैलियां, इस साल स्वतंत्रता दिवस की तैयारियां बड़ी अनोखी रही। सभी जिलों में छात्रों, सरकारी कर्मचारियों, सुरक्षा बलों और स्थानीय लोगों ने रैलियों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। इस बीच पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। आकाशवाणी समाचार के लिए मैं श्रीनगर से इश्फाक शाह।
1: उधर तमिलनाडु में बस टर्मिनल, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन जैसे सभी महत्वपूर्ण स्थानों पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय चेन्नई के पोर्ट सेंट जॉर्ज के प्राचीर पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। चेन्नई के महत्वपूर्ण स्थानों को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल की सड़कों पर आज तिरंगा यात्रा के दौरान पूरे शहर में देशभक्ति का उत्साह देखने को मिल रहा है।
3: भोपाल में आज हर घर तिरंगा अभियान के तहत विशाल तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है। इस यात्रा में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी शामिल हैं। कोलार 6 लेन स्थित मदर टेरेसा स्कूल के सामने से शुरू हुई ये यात्रा करीब 32 किलोमीटर का सफर तय कर भैंसाखेड़ी मंडी पहुंचेगी। आयोजकों का दावा है कि यात्रा में करीब 1 लाख से ज्यादा लोग शामिल हो रहे हैं। पूरे रास्ते में कई 100 जगह पर स्वागत की व्यवस्था की गई है। बड़ी संख्या में युवा, महिलाएं और सामाजिक संगठनों के लोग हाथों में तिरंगा लेकर शामिल हो रहे हैं। चूना भट्टी कई जगहों पर सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं, जहां नशा मुक्ति और युवाओं को जागरूक करने के संदेश भी दिए जा रहे हैं। अभिनव गोयल, आकाशवाणी समाचार, भोपाल।
1: ये समाचार हमारे न्यूज ऑन AIR ऐप और हमारी वेबसाइट www.newsonair.gov.in पर भी उपलब्ध हैं। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। इस अवसर पर देश वर्ष 1947 के विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वाले और असहनीय पीड़ा झेलने वाले सभी लोगों को याद कर रहा है।
4: विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के अवसर पर राजधानी दिल्ली सहित देश भर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। 2021 में सरकार ने हर वर्ष 14 अगस्त को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया था। विभाजन ने लाखों लोगों को प्रभावित किया और अपने पीछे गहरे घाव छोड़े। विभाजन के कारण करीब 2 करोड़ लोग प्रभावित हुए। यह दिवस सामाजिक विभाजन और वैमनस्य को दूर करने तथा शांति, सद्भाव और एकता की भावना को मजबूत करने की आवश्यकता की भी याद दिलाता है। आकाशवाणी समाचार दिल्ली।
1: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विभाजन से प्रभावित सभी लोगों के साहस को याद किया है। गृह मंत्री अमित शाह ने 14 अगस्त 1947 के दिन को इतिहास के सबसे क्रूर अध्यायों में से एक बताया है। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के लाभार्थियों तक कल्याणकारी योजनाओं को पहुंचाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्र सरकार ने आज केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ में प्रत्यक्ष लाभ अंतरण के लिए केंद्रीय बैंक डिजिटल मुद्रा CBDC ई रुपए का शुभारंभ किया। इस शुभारंभ के साथ चंडीगढ़ देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बन

0: गया है, जिसने खाद्य सब्सिडी के लिए सीबीडीसी आधारित प्रत्यक्ष लाभ अंतरण को पूरी तरह से लागू किया है। सरकार ने जम्मू कश्मीर में 18 करोड़ 60 लाख रुपए की 3 विरासत संरक्षण परियोजनाओं को मंजूरी दी है। इनका उद्देश्य ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थलों को पुनः स्थापित करना और क्षेत्र की विरासत पर्यटन क्षमता को मजबूत करना है। गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारत के रजिस्ट्रार जनरल कार्यालय ने जनगणना 2027 के लिए परिवार अनुसूची से संबंधित प्रश्नावली अधिसूचित कर दी है। इसमें माता पिता का विवरण, आधार, मोबाइल नंबर, कुल बैंक खातों की संख्या, काम के स्थानों तक आने जाने का विवरण, धर्म और जाति से संबंधित 40 सवाल हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने कहा है कि स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने फरार ड्रग सरगना वीरेंद्र सिंह बसोया को संयुक्त अरब अमीरात से वापस लाने में सफलता हासिल की है। आज सुबह नई दिल्ली के आईजीआई हवाई अड्डे पर पहुंचते ही उसे हिरासत में लिया गया। उन्होंने कहा कि ये मादक पदार्थों के खिलाफ सरकार की कतई बर्दाश्त न करने की नीति में एक नया मील का पत्थर है। झारखंड में भर्ती परीक्षाओं में कथित अनियमितताओं के विरोध में विद्यार्थियों के आंदोलन का आज 21वां दिन है। हमारी संवाददाता ने बताया है कि प्रदर्शनकारियों ने आंदोलन समाप्त करने से इनकार कर दिया है।
1: छात्र कल राजधानी रांची की सड़कों पर एक भव्य तिरंगा मार्च निकाल रहे हैं, जिसमें पूरे राज्य से हजारों युवाओं के जुटने की उम्मीद है। स्वतंत्रता दिवस समारोह और छात्र विरोध को देखते हुए रांची जिला प्रशासन पूरी तरह सतर्क है। संवेदनशील इलाकों और छात्रों के तिरंगा मार्च के रास्ते पर भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। छात्रों की मांगे हैं, 14वीं जेपीएससी प्रारंभिक परीक्षा को पूरी तरह रद्द किया जाए, पूरे मामले की केंद्रीय जांच ब्यूरो से जांच के आदेश दिए जाएं। सरकार राज्य की सीआईडी से मामले की जांच करा रही है और इस संबंध में जेपीएससी के एक पूर्व अध्यक्ष को भी गिरफ्तार किया गया है। आकाशवाणी समाचार के लिए रांची से मैं पूनम करकेट्टा।
0: राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने इस वर्ष जनवरी से मई के बीच कथित तौर पर आत्महत्या से 19 केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कर्मियों की मृत्यु के संबंध में केंद्रीय गृह सचिव और सीआरपीएफ के महानिदेशक को नोटिस जारी किया है। घटना का स्वतः संज्ञान लेते हुए आयोग ने 2 सप्ताह के भीतर इस मामले पर विस्तृत रिपोर्ट मांगी है। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद राहत कार्यों में सहयोग के लिए 20 मेट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी है। विदेश मंत्री डॉ एस जयशंकर ने सोशल मीडिया पोस्ट में बताया है कि इस सहायता में दवाएं, चिकित्सा उपकरण, अस्थायी आश्रय और स्वच्छता सहायता तथा अन्य आवश्यक वस्तुएं शामिल हैं। उन्होंने कहा कि भारत इस कठिन समय में कोलंबिया के साथ एकजुटता से खड़ा है। मौसम विभाग ने आज छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड में मूसलाधार वर्षा का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। अगले 2 दिन तक दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, पंजाब, पश्चिमी मध्य प्रदेश, मध्य महाराष्ट्र, ओडिशा, विदर्भ, पश्चिम बंगाल के तराई क्षेत्र और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में भी तेज बारिश की संभावना है। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने चमोली जिले में सुरंग हादसे के बाद आज घटनास्थल पहुंचे और राहत तथा बचाव कार्यों का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने बचाव अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए हैं।
2: 22 लोग कुल काम कर रहे थे, उसमें से 3 लोगों को छोड़ के बाकी सभी लोग रेस्क्यू हो गए हैं और जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको यहाँ एडमिट किया है अस्पताल में। यहाँ पर बचाव के लिए और खोजबीन के लिए सभी प्रकार की एजेंसियां यहाँ पर हैं। हमारा प्रयास है कि सभी को जल्दी से जल्दी निकाला जाए।
0: पीपलकोटी क्षेत्र में निर्माणाधीन सुरंग हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सुरंग ढहने से हुई जान हानि पर दुख व्यक्त किया है। ओडिशा में लगातार 2 दिन से हो रही बारिश के कारण उत्तरी हिस्सों में एक बार फिर बाढ़ का खतरा बढ़ गया है।
3: उत्तरी ओडिशा के कई इलाकों में बाढ़ के हालात गंभीर है। बाढ़ का पानी निचले इलाकों में फैल रहा है, सड़कें डूब गई है और उफनती नदियों के वजह से संपर्क टूट गया है। केंदुझर जिले के आनंदपुर और पटना में बैतरणी नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, जबकि बालेश्वर जिले में मथानी में जलका नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। आनंदपुर रिंग तटबंध में दरार आने से बाढ़ का पानी फिर से अंदर आ गया है। केंदुझर जिले के जोड़ा और बड़बिल में भी जलभराव की स्थिति है। मयूरभंज में बूढ़ा बलंगा नदी का पानी बारीपदा के कुछ हिस्सों में फैल गया है। सुवर्णरेखा और बैतरणी नदियों के खतरे के निशान से ऊपर बहने के कारण अधिकारियों ने जोखिम वाले इलाकों के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाना और निगरानी बढ़ाना शुरू कर दिया है। प्रकाश दास, आकाशवाणी समाचार, भुवनेश्वर।

0: घरेलू शेयर बाजार में दोपहर के कारोबार में आज गिरावट का रुख है। सेंसेक्स 212 अंक गिरकर 77,868 पर और निफ्टी 45 अंक फिसल कर 24,351 पर आ गया। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 80वें स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर आज राष्ट्र को संबोधित करेंगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले पर राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे और देश को संबोधित करेंगे। आज विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस है। प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री ने विभाजन के दौरान अपनी जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि दी। भारत ने कोलंबिया को भूकंप के बाद पुनः निर्माण कार्यों में सहयोग के लिए 20 मीट्रिक टन राहत सामग्री की पहली खेप भेजी। और छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, झारखंड में आज मूसलाधार वर्षा की चेतावनी। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।
1: आप श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं। FM बालतल 103.7 MHz, FM पहलगाम 100.1 MHz, DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए।
2: तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, तेरे माने एक तरफ, तेरे निराश एक तरफ, सारी दुनिया देखी है पर कैलाश एक तरफ।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीडीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, जैसा कि हमने आपको बताया कि छड़ी मुबारक का जो सफ़र है गुफा तक का, वो शुरू हो चुका है और 12 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक की विशेष पूजा की गई ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में, जिसकी रिकॉर्डिंग हमने आपको समाचार से पहले सुनवाई। 13 अगस्त 2026 को पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा की गई शारिका भवानी मंदिर हरि पर्वत पर जो स्थित है शारिका भवानी मंदिर, वहाँ पर जो है छड़ी मुबारक की पूजा 13 अगस्त को की गई। आइए आपको इसकी रिकॉर्डिंग जो है वो सुनवाते हैं।
1: हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर
2: हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर हर
3: मंगलम पुंडरेकाक्ष मंगलाय तनो हरे सर्वमंगला।

भारत वर्षे भारत खंडे अरब शांतर्गते मुंड श्रीनगर क्षेत्रांतर्गते श्री शारिका मंदिर परिसरे हरि पर्वत प्रांगण अमुक नाना नामना हम श्री महंत दीपेंद्र गिरी नामना हम श्री अमरनाथ स्वामी छटकाभ्यो पूजनाख्य गणेश गौरी पूजनम शारिका भगवती पूजनम अमुक गोत्रोत्पन्ना हम भृगु गोत्रोत्पन्ना हम सकल जगत भारत वर्ष समूह विश्व कल्याणार्थ हितार्थाय सुख शांति स्मृद्धि समृद्धि।

श्रोताओं, ये रिकॉर्डिंग आप सुन रहे थे जो कि 13 अगस्त 2026 को पूजा हुई थी हरि पर्वत पर स्थित शारिका भवानी मंदिर में। हम आपको छड़ी मुबारक के हवाले से जो है इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसका जो शेड्यूल है वो ऐसा है कि 12

अगस्त को, जैसा कि आपने हमने आपको बताया कि पवित्र छड़ी मुबारक की विशेष पूजा की गई ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर में, 13 अगस्त को हरि पर्वत पर स्थित शारिका भवानी मंदिर में जो है पवित्र छड़ी मुबारक की पूजा की गई, 15 अगस्त को यानी कि कल दशनामी अखाड़ा श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में छड़ी मुबारक की रस्में जो हैं वो की जाएंगी। 17 अगस्त की अगर बात करें यानी कि नाग पंचमी के अवसर पर दशनामी अखाड़ा में छड़ी पूजन जो है वो किया जाएगा। उसके बाद गुफा की ओर मुख्य पैदल यात्रा जो है वो 22 अगस्त जो है 2026 से शुरू होगी, जो पारंपरिक रास्ते से होते हुए अलग अलग पड़ावों पर रुकेगी। 22 अगस्त की अगर बात करें तो श्रीनगर से पहलगाम का सफ़र जो है वो शुरू होगा। श्रीनगर से रवानगी, लिदर नदी के किनारे विशेष पूजा और रात का ठहराव होगा। 23 अगस्त की अगर बात करें तो पहलगाम में दूसरी रात का ठहराव होगा। 24 अगस्त 2026 को पहलगाम से चंदनवारी का सफ़र जो है वो तय किया जाएगा, यानी कि चंदनवारी कैंप में रात का ठहराव होगा। 25 अगस्त 2026 को चंदनवारी से शीशनाग का सफ़र तय किया जाएगा, शीशनाग कैंप में रात का ठहराव होगा। 26 अगस्त की अगर बात करें तो शीशनाग से पंचतरनी की ओर जो है छड़ी मुबारक को लिया जाएगा, पंचतरनी कैंप में रात का ठहराव होगा। 27 अगस्त को पंचतरनी में ही दूसरी रात का ठहराव होगा और 28 अगस्त की अगर बात करें, 28 अगस्त 2026 पंचतरनी से पवित्र गुफा की ओर छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। श्रवण पूर्णिमा है उस दिन, यानी कि रक्षाबंधन के दिन आखिरी पूजा और दर्शन होंगे, जिसके साथ ही यात्रा 2026 का औपचारिक समापन होगा और 29 अगस्त 2026 वापसी की यात्रा शुरू होगी और इस तरीके से वापस छड़ी मुबारक को श्रीनगर लाया जाएगा। तो ये शेड्यूल है, ये शेड्यूल जो है छड़ी मुबारक का रहेगा और यहाँ पर हम आपके साथ जुड़े हुए हैं। आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग। एक बहुत ही कुछ और इन्फॉर्मेशन जो है हमारे पास आप तक पहुंचाते रहेंगे। आप ये भजन जो है वो सुनिए और बने रहिए हमारे साथ।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन जुड़ चुके हैं बानीहल से। आइए सुनते हैं क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास। जी तस्कीन
1: जी, शुक्रिया। जैसा कि आपको मालूम है, आज यात्रा छठे दिन भी मौतल नहीं, जम्मू से 9 तारीख को से मौतल किया गया था मौसम की खराबी की वजह से। और जो हुकाम के मुताबिक जो यात्रा ट्रैक्स जो है यहाँ पहलगाम से और बालतल से उनकी मरम्मत को लेकर जो 9 तारीख को सस्पेंड की गई थी यात्रा, तो वो अभी मुसलसल सस्पेंशन में ही है। और इस दौरान जो जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे है उसका ट्रैफिक मामूल के मुताबिक चल रहा है। टूरिस्ट और आम गाड़ियां जो जम्मू कश्मीर या बाहर के कश्मीर आते जाते रहे हैं, तो सैकड़ों की तादाद में अब तक गाड़ियां दोनों तरफ से अपने अपने मंजिल की तरफ जा रही हैं। जबकि इस दौरान उधमपुर के सेक्टर में हल्की बारिशें हुई आज दोपहर के आसपास, ताहम इस वो हाँ वहां पर कुछ वक्त के लिए एक जो ट्यूब है सड़क जो है टोलमैन हाईवे की, उसके थोड़ा सा स्लिप की हो गई थी, उसकी वजह से वहां उसे कुछ वक्त के लिए बंद कर देना पड़ा करीबन 1-2 घंटों के लिए, जब तक वो जो बरसाती बारिशों का एक दौर था वो गुजर गया। उसके बाद वहां मामूल के हालात हो गए, तो लेकिन उसका ट्रैफिक पर कोई असर नहीं पड़ा। दूसर पर ट्रैफिक जो है हाईवे पर ये चल रहा है और ट्रक्स को एक तरफ से चलने की इजाजत दी जा रही है। इधर बाकी जो मौसमी हाल है, अगर कहेंगे तो सुबह से ही आज हल्के हल्के बादल है, उमस भी है, लेकिन उसके साथ साथ बादल भी हवाएं भी चल रही है। जबकि अगर यहाँ बानाल को छोड़कर हम रामगढ़ उधमपुर की बात करेंगे तो वहां पर शिद्दत की गर्मी है आज सुबह से, जम्मू में भी तो गर्मी का वो दौर है उन इलाकों में। लेकिन साथ साथ जो ये मानसून का सिलसिला आता है, बादल वगैरह आते हैं, धूप छा जाती है, तो उससे थोड़ा सा जो ये थोड़ा पहाड़ी इलाके हैं हमारे, तो उन पर जो थोड़ा मौसम जो है कुछ बुआर हो जाता है। फिलहाल हाईवे चल रहा है और उम्मीद है ये चलता रहे। और फिलहाल बादल है, उधमपुर में बारिशें हुई, लेकिन इस रामबन सेक्टर में अभी नासी टनल और बानहाल के दरमियान ऐसा कुछ नहीं हुआ, अलबत्ता बादल जो है वो छाए हुए हैं।
0: जी बहुत बहुत तस्कीन हमारे साथ जुड़ने के लिए
1: जी शुक्रिया।
0: जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता मोहम्मद तस्कीन बानीहल से, जिन्होंने हमें हाईवे का हाल बताया और वहाँ पर जो मौसम है उसके हवाले से भी हम तक जो है इन्फॉर्मेशन पहुँचाई। यहाँ पर मैं आप तक कुछ ऑफिशियल डेस्क नंबर्स जो हैं वो पहुँचाना चाहूँगी। ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट रामबन का जो बानीहल एरिया जो है वहाँ के लिए अगर आप किसी भी ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट से जुड़ना चाहते हैं तो उनका नंबर है 9419993745, या आप टोल फ्री नंबर 1800-1807043 पर जो है कॉल कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ पर आपको बता दें कि अगर आप नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी कि उसका जो इमरजेंसी टोल फ्री नंबर है वो है 1033। SSP रामबन ऑफिस हेल्पलाइन है 0199826668 और

ट्रैफिक कंट्रोल रूम श्रीनगर का जो नंबर है वो है 01942450022। जी श्रोताओं, आप तक क्षण क्षण की सूचना पहुंचाते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे संग, एफएम बालतल, एफएम पहलगाम के संग।

अमरनाथ यात्रा एक पवित्र और महत्वपूर्ण यात्रा है जो भगवान शिव को समर्पित है। ये यात्रा जम्मू कश्मीर के हिमालयन पर्वत क्षेत्रों में होती है और आपको बता दें कि गुफा के अंदर हर साल प्राकृतिक रूप से बर्फ का एक शिवलिंग बनता है जो चंद्रमा के घटने और बढ़ने के साथ अपना आकार बदलता है। इसे ही बाबा बर्फानी कहा जाता है। मान्यताओं के अनुसार ये वही गुफा है जहां भगवान शिव ने माता पार्वती को अमर होने का रहस्य सुनाया था।

श्रोताओं, पवित्र गुफा तक पहुंचने के लिए श्रद्धालु दो अलग अलग रास्तों का चुनाव करते हैं। पहला रास्ता है पहलगाम का रास्ता, जी हाँ, जिसे पारंपरिक रास्ता भी कहा जाता है, और ये रास्ता काफ़ी लंबा रास्ता है। इसकी जो शुरुआत है वो पहलगाम से होती है। नुनवान बेस कैंप पहलगाम से इस यात्रा की शुरुआत होती है। इसकी दूरी जो है वो लगभग 48 किलोमीटर की है, जिसे पैदल चलने में 3 से 5 दिन लगते हैं। ये रास्ता बहुत ही खूबसूरत है, जिसे आमतौर पर बुजुर्ग या परिवार पसंद करते हैं। इसके मुख्य पड़ाव चंदनवारी, शीशनाग और पंचतरणी हैं। दूसरा मार्ग है बालतल का मार्ग, जो छोटा और सीधी चढ़ाई है। जी हाँ, इसकी शुरुआत बालतल बेस कैंप सोनमर्ग से होती है। इसकी दूरी लगभग 14 किलोमीटर की है। इसे एक ही दिन में पूरा किया जा सकता है। ये रास्ता बहुत ही खड़ी चढ़ाई और पतला है, जिसमें ज़्यादा शारीरिक मेहनत लगती है। यात्री आमतौर पर दर्शन करके उसी दिन या अगले दिन वापस लौट आते हैं। जिन भक्तों को इस बार दर्शन का मौका नहीं मिला, हम आशा करते हैं कि अगले साल आप सबको जो है बाबा भोलेनाथ के का बुलावा आए और आप जो है बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर सके। अगर आप अगले साल इस यात्रा पर आने का प्लान बना रहे हैं, तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास कुछ ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो होने चाहिए। आपके पास कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट होना ज़रूरी है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन की कमी और ज़्यादा ठंड के कारण हर यात्री को सरकारी ऑथोराइज्ड डॉक्टर से मेडिकल चेकअप कराना और CHC लेना, यानी कि कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट लेना ज़रूरी होता है। और इन डॉक्टर्स का लिस्ट जो है वो इस वेबसाइट पर इनकी वेबसाइट पर निकलता है, और अकॉर्डिंगली आप उसी डॉक्टर से अपना चेकअप और उनसे CHC का सर्टिफिकेट ले सकते हैं। इसमें आपको एडवांस में रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है। आप ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों तरीकों से अपना स्लॉट जो है वो बुक कर सकते हैं। श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड सुरक्षा के लिए सभी यात्रियों को जम्मू या बेस कैंप्स पर RFID ट्रैकिंग टैग्स देते हैं, जिससे उनकी लोकेशन जो है वो ट्रैक हो जाती है, और ये कार्ड्स आपको हमेशा अपने गले में पहनने पड़ते हैं। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना है। और जैसा कि हमने कहा कि हम आशा करते हैं कि आप जिन्होंने इस बार दर्शन कर लिए हैं, बार बार आपको बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो है प्राप्त हो, आपको बाबा भोलेनाथ का बुलावा हो, और जो भक्त इस बार दर्शन नहीं कर पाए, उन्हें अगले साल बाबा भोलेनाथ के जो है दर्शन प्राप्त हों और बाबा भोलेनाथ का जो बुलावा है उन्हें भी आए। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं और एक भजन सुनते हैं, उसके बाद आपके साथ वापस जुड़ेंगे और कोशिश करेंगे हमारे संवाददाताओं से जुड़ने के लिए। तो यहाँ पर आप बने रहिए हमारे संग FM बालतल FM पहलगाम के संग।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ हमारे संवाददाता जावेद मेहराब जम्मू से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जी जावेद
1: जी, जम्मू के पहले निवास स्थान की बात करें तो पहले मौसम की हम बात करते हैं, यहाँ निवास स्थान पे किस तरह का मौसम है। एक्चुअली यहाँ पिछले 3 दिनों से लगातार रात को दिन में कई बार बारिशें लगातार चल रही हैं और आज भी मौसम बिल्कुल अबर आलूद है और आसमान पर घने बादल हैं। और इस बीच ये जो बारिश का अनुमान है वो बराबर बना हुआ है, लेकिन इसी बीच बारिश के

बीच भी और बारिश के दौरान भी कई बार जो उमस और गर्मी है वो बराबर बनी हुई है। बारिश से हल्का सा, जब बारिशें तेज हो जाती हैं तो थोड़ा सा जो हल्का सा जो राहत मिलती है वो अपनी जगह है, लेकिन इस दौरान जो है गर्मी और उमस भी जैसे ही बारिश बंद हो जाती है बहुत तेज हो जाती है। तो अभी जो मौसम है वो बिल्कुल बारिशों का बना हुआ है और शहर में इस बीच यात्रा पर जो खास तौर पर श्रावण के इस उपलक्ष में यहाँ के प्राचीन मंदिरों में होने वाली पूजा में हिस्सा लेते श्रद्धालुओं की आस्था, विश्वास और बाबा बर्फानी के प्रति उनका स्नेह देखते ही बनता है। जैसे मैंने कहा कि निवास स्थान में अंदर का माहौल उन श्रद्धालुओं से जोश जज्बे से भरा हुआ है जो यहाँ देश के विभिन्न भागों से निकलकर यहाँ पहुंचे जरूर हैं, बहुत कम संख्या में हैं, लेकिन यहाँ अभी बराबर बने हुए हैं। और यहाँ पर जो प्राचीन मंदिर है और उसके अलावा जो श्रद्धालु शहर के विभिन्न पर्यटक स्थल है और उसके अलावा जो धार्मिक स्थल है उनकी तरफ भी श्रद्धालुओं को देखा जा सकता है और खास तौर पर रेलवे स्टेशन के आसपास श्रद्धालुओं की खासी तादाद देखी जा सकती है। लेकिन ये इंतजार इस बात का है कि बारिशों का ये सिलसिला कब थमेगा और कब उन्हें अनुमति मिलेगी, इसका अभी इंतजार और सब्र के साथ ही हो सकता है, क्योंकि अब जो है छड़ी मुबारक की भी पूजा शुरू हो चुकी है और तीर्थ यात्रा जो है वो अपने आखिरी क्षण में भी है। इस बीच श्रद्धालु भी को अपनी तरफ से जो है कोशिशों में इसी लगे हुए हैं कि वो यहाँ के स्थानीय और प्राचीन मंदिरों में जो पूजा अर्चनाएं हो रही हैं, भजन आरतियां हो रही हैं, उनमें वो अपना पूरी तरह से भाग ले सके और यहाँ जो है अपनी जो मनोकामना है वो भगवान भोलेनाथ के सामने भी रखें। इस बीच जो श्रद्धालुओं के लिए यहाँ लंगर खाने पीने की व्यवस्था या प्रबंधन में किसी तरह की कोई कमी नहीं है। मौसम जैसा मैंने कहा कि बादल छाए हैं, लेकिन बारिशों की वजह से थोड़ा सा राहत जरूर है, क्योंकि जो मौसम जब खुला होता है तब उमस और गर्मी बहुत तेज होती है, लेकिन जब मौसम बिल्कुल घने बादलों से भरा हो तो उससे मौसम हल्का सा सुहाना भी बन जाता है, जिसकी वजह से श्रद्धालु भी शहर के विभिन्न इलाकों में देखे जा सकते हैं, यहाँ के बाजारों में देखे जा सकते हैं और खास तौर पर यहाँ वो अपनी खरीदारी और उसके अलावा जो जैसे मैंने कहा कि यहाँ के मंदिरों में वो पूजा अर्चनाओं में भरपूर हिस्सा ले रहे हैं। खबर है कि अभी महंत दीपेंद्र गिरी की अगुवाई में छड़ी मुबारक जो है कल वीरवार को श्रीनगर के हारी पर्वत स्थित प्राचीन शारिका भवन मंदिर ले जाया गया था और यहाँ श्रावण की जो उपलक्ष में जो उनकी पूजा होती है, देवी की पूजा अर्चना की जाती है वो हुई। इस दौरान पवित्र छड़ी मुबारक के साथ आए साधुओं ने भी लगभग एक घंटे तक चली प्रार्थनाओं में हिस्सा लिया। इन प्रार्थनाओं में खास तौर पर जम्मू कश्मीर और पूरे देश की शांति समृद्धि और के लिए भी प्रार्थनाएं की गई और इस मौके पर महंत दीपेंद्र गिरी ने देवी शारिका भवन भवानी को साधुओं के बीच चक्रवर्ती देवी का भी नाम से भी वो मंसूब किया और कहा कि उन्हें पहले योग में चक्रवर्ती देवी के नाम से भी जाना जाता था, माना जाता है कि वो श्रीनगर शहर की अशस्त देवी है। और इस दौरान छड़ी मुबारक को 17 अगस्त को, जैसे कि प्रोग्राम के मुताबिक 17 अगस्त को नागपंचमी के दिन मौके पर ही पूजन किया जाएगा। मुख्य तीर्थ यात्रा के लिए छड़ी मुबारक 22 अगस्त को श्रीनगर के दशनामी गाड़े से दक्षिण कश्मीर में 13,500 फिट की ऊंचाई पर स्थित अमरनाथ जी की पवित्र तीर्थ स्थल के लिए रवाना किया जाएगा और इस साल 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के शुभ अवसर पर पूजा अर्चना की जाएगी। और इसी वर्ष की जो ये बाबा बर्फानी की यात्रा है उसके साथ ही वो संपन्न हो जाएगी। लेकिन ये प्रोग्राम मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अब छड़ी मुबारक की जो पूजा है वो लगातार चल रही है, लगातार विभिन्न स्थानों पर श्रीनगर के और घाटी के विभिन्न स्थानों पर, जिसमें मध्य कश्मीर जो है श्रीनगर और उसके अलावा जो दक्षिणी कश्मीर है वहां ले जाया जाएगा, उसमें विभिन्न स्थलों पर ले जाएगा और जहां पूजा अर्चनाएं हो रही

एस्कॉर्ट के साथ काफिले में ही आगे बढ़ेंगे। किसी भी जो जो जो भी व्हीकल है वो अकेले आगे नहीं जा सकता है। इसकी जो कट ऑफ टाइमिंग है वो है यात्रियों को जो है धूप और रास्ते की हालत को देखते हुए पुंछ के बिम्बर गली स्ट्रेच को दोपहर 3 बजे से पहले क्रॉस करना होगा ताकि वो सुरक्षित समय पर बेस कैंप पहुंच सकें। रास्ते में अलग

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इस तारिक पहलगाम से जुड़ चुके हैं। क्या कुछ अपडेट्स हैं उनके पास, आइए सुनते हैं। जी तारिक,
1: बहुत शुक्रिया। अभी 57 दिनों चलने वाली इस श्री अमरनाथ जी यात्रा के अब मैं

वो दा दिन शेष रह गए हैं। फिलहाल बदलते मौसम की हालात के मद्देनजर यात्रा के गहमा गहमी भागदौड़ और पहलगाम दोनों मार्गो से आरजी तौर पर मुलतवी है। अलबत्ता इस दौरान इस पवित्र यात्रा से जुड़े एक अहम धार्मिक परंपरा जो है छिड़ी मुबारक की तैयारियां जोरों पर है, जिसकी गहमा गहमी श्रीनगर से पहलगाम तक जारी है। श्री अमरनाथ जी यात्रा चुनिस के सिलसिले में छड़ी मुबारक से मुतल्लिक अहम धार्मिक रसूमात और प्रोग्रामों का जो पहली शुरू जारी किया गया था। इस पवित्र छड़ी को शिव और शक्ति की प्रतीक माना जाता है और इसके सिलसिले में मुख्तलिफ मंदिरों में विशेष पूजा और धार्मिक अनुष्ठान मुनक्कद किए जा रहे हैं। शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त को शंकराचार्य मंदिर श्रीनगर में दर्शन की प्रक्रिया मुकम्मल हुई, जबकि 13 अगस्त कल कौशाली का भवानी मंदिर में विशेष पूजा की गई और अब कल यौम आजादी के दिन पर तो इस्लामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापन की रस्म अदाई की जाएगी और जबकि 17 अगस्त को नाग पंचमी के मौके पर छड़ी पूजन भी होगा। इसके बाद तो बीच में कुछ वक्फा रहेगा और 22 और 23 अगस्त को छड़ी मुबारक पहलगाम पहुंच जाएगी, जहाँ गौरीशंकर मंदिर में भूमि पूजन के बाद रात का पड़ाव पहलगाम में ही होगा। 24 अगस्त को चंदनवारी, 25 अगस्त को शीशनाग, जबकि 27 अगस्त को पंचतरनी में रात का पड़ाव रहेगा। आखिरकार 28 अगस्त को श्रावण पूर्णिमा के पवित्र दिन छड़ी मुबारक का जो मुकद्दस गुफा पहुंचेगी, जहां बाबा बर्फानी के दर्शन और विशेष धार्मिक रसूमात के साथ श्री अमरनाथ यात्रा 2024 का रिवायती समापन होगा। बताओ छड़ी मुबारक की ये परंपरा सिर्फ कश्मीरी पंडितों या दीगर लोगों के समाज के लिए ही नहीं, बल्कि कश्मीर के मुकामी स्थानीय लोग जो है मुस्लिम समाज के लिए भी अपनी एक खास संस्कृति और तारीखी अहमियत रखता है। मुकामी लोग सदियों से छड़ी मुबारक की रुखसती को सरद मौसम की आमद की अलामत के तौर पे भी देखते आए हैं। यानी छड़ी जब मुबारक वहां से रुखसत होती है अमरनाथ गुफा से, तो यहाँ लोग समझते हैं कि सर्दियों का मौसम आ गया है। छड़ी मुबारक को श्री अमरनाथ जी यात्रा का एक गहरा धार्मिक और तारीखी संबंधी है। यही वजह है कि यात्रा के परंपरा का आगाज और समापन छड़ी मुबारक के साथ ही होता है। कहा जाता है कि एक साधु यजन ने अपने भक्तों को श्री अमरनाथ गुफा की जानिब जाने और वहाँ शिवलिंगम के दर्शन करने की हिदायत दी, जबकि इसके शिष्य यात्रा पर रवाना हुए तो यात्रा मार्ग पर राक्षसों ने उन्हें परेशान किया और आगे बढ़ने से रोक दिया। ये शिष्य वापस ब्रंगी शाह के पास पहुंचे और अपने परेशानी बयान की तो ब्रंगी शाह ने भगवान शिव की प्रार्थना की। माना जाता है कि भगवान शिव ने उन्हें एक पवित्र त्रिभुवन अता किया, जिसे बाद में छड़ी मुबारक का नाम दिया गया है। छड़ी मुबारक को शिव और शक्ति की एक पवित्र निशानी मानी जाती है। तब से ही यात्रियों का एक बड़ा जत्था जो साधुओं के हमरा होता है रिवाजी तौर पे इस पवित्र छड़ी के साथ श्री अमरनाथ गुफा की जानिब यात्रा करता रहा है। अब जरा मौसम का हाल भी जान लेते हैं तो पहलगाम से श्री अमरनाथ गुफा तक यात्रा मार्ग पर इस वक्त बारिशों का सिलसिला शुरू हो चुका है, जैसा मौसमी विभाग की पेशगोई भी थी, बल्कि पूरे दक्षिणी कश्मीर में इस वक्त बारिशें हो रही है। गुफा के नजदीक दर्जे हरारत तकरीबन 16 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया है, जो शाम के दौरान 11 डिग्री तक पहुंच सकता है। नमी की शरह 55% के आसपास दर्ज है। अगर मौसमी पेशगोई के मुताबिक सुबह के अवकाश बारिश के इम्कान कम होने और दोपहर के करीब वाला इलाकों में हल्की बारिश में गिरने की बात कही गई थी, जो बिल्कुल पैन मुताबिक है। पहलगाम में मौसम का दृश्य अब आलूदा रहा और खुशगवार भी, लेकिन इस वक्त वहां दोपहर के बाद ही फौरन बारिशें शुरू हो गई है। तो मौसमी विभाग के अनुसार बारिशों का जो ये सिलसिला ये दौर बड़ा तेज रहेगा और दिन के दौरान दर्ज हरारत 30 डिग्री सेल्सियस दर्ज बिल्कुल था और इसमें थोड़ी सी कमी आ गई है। बाद मुकाम पर शाम के अवकाश हल्की बारिशों की भी देखने को मिल सकती, लेकिन इस वक्त बारिशें हो रही है। खराब मौसमी हालात के बाईस श्री अमरनाथ जी यात्रा फिलहाल भारत और पहलगाम दोनों मार्गो से आर्जी तौर पर मौतल है। ट्रैक की मरम्मत और बहाली का काम जारी है। यात्रियों से अपील की गई है कि सरकारी तौर पर इजाजत और क्लियरेंस मिलने तक यात्रा मार्ग पर जाने से गुरेज करें। दूसरी जाने बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO बारिशों से मुतासर और मुकाम पर मलबा हटाने, मरम्मत और रास्तों की बहाली का काम

0: मॉनिटर अंजाम दे रही है। ये सब कुछ इस वक्त जो पहलगाम रूट की मैं बात कर रहा हूँ तो मजमू तौर पर जो आने वाली यात्रा आने वाली छड़ी मुबारक है उनकी क्लियरेंस के लिए किया जाता है। मजमू तौर पर जो हम बात करें तो 3 जुलाई से अब तक जो 4,80,000 से जायद श्रद्धालु श्री अमरनाथ जी के पवित्र गुफा में बाबा बर्फानी के दर्शन प्राप्त कर चुके हैं। तो बताऊँ हमारी कोशिश रहेगी कि आने वाले दिनों में इस विशेष प्रसारण के जरिए हम छड़ी मुबारक से जड़ी मुख्तलिफ पड़ाव और उनकी धार्मिक और तारीखी अहमियत और कश्मीर की सदियों पुरानी संस्कृति पर परंपरा से आपको रूबरू कराते हैं। फिलहाल इसका इसी कामना के साथ भी हम आपसे इजाजत चाहते हैं और बाबा बर्फानी के सभी श्रद्धाओं के लिए मनोकामना पूरी हो और इनकी यात्रा जो थी सुखद सुरक्षित और मंगलमय रहे।
1: जी बहुत बहुत धन्यवाद तारिक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी श्रोताओं ये थे हमारे संवाददाता इस तारिक पहलगाम से जिन्होंने छड़ी मुबारक के हवाले से हम तक जो है ख़ास कुछ इन्फॉर्मेशंस पहुंचाई है। छड़ी मुबारक की बात अगर करें तो भगवान शिव की पवित्र और ऐतिहासिक छड़ी है छड़ी मुबारक जो अमरनाथ यात्रा का औपचारिक समापन का प्रतीक मानी जाती है। ये शुद्ध चांदी से बनी एक पवित्र छड़ी है जिसे बाबा अमरनाथ की यात्रा का सबसे मुख्य हिस्सा माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस पवित्र छड़ी की शुरुआत सदियों पहले आदि शंकराचार्य ने की थी। ये छड़ी भगवान शिव की शक्ति और उनके विश्वास का प्रतीक है। इस पवित्र छड़ी की देखरेख और इस पूरी यात्रा की अगवाही दशनामी अखाड़ा के महंत दीपेंद्र गिरी जी करते हैं। वो इसे श्रीनगर से लेकर अमरनाथ गुफा तक पैदल लेकर जाते हैं। मान्यता है कि जो लोग किसी वजह से अमरनाथ गुफा तक नहीं जा पाते अगर वो छड़ी मुबारक के रास्ते में या श्रीनगर या पहलगाम के पड़ावों पर दर्शन कर लें तो उन्हें पूरी यात्रा का फल मिल जाता है। इससे पहले भी हमने आपको छड़ी मुबारक के शेड्यूल के हवाले से जो है आपके साथ आप तक इन्फॉर्मेशन्स पहुंचाई। यहाँ पर एक बार फिर आपको छड़ी मुबारक का शेड्यूल बताते हैं। 12 अगस्त को पवित्र छड़ी मुबारक की विशेष पूजा की गई शंकराचार्य मंदिर में। 13 अगस्त को हरि पर्वत पर स्थित शारिका भवानी मंदिर में इसकी पूजा की गई। 15 अगस्त यानी कि कल दशनामी अखाड़ा श्रीनगर में छड़ी स्थापना की रस्में की जाएंगी। 17 अगस्त को नाग पंचमी के अवसर पर दशनामी अखाड़ा में मुख्य छड़ी पूजन किया जाएगा। इसके बाद मुख्य पैदल यात्रा 22 अगस्त से शुरू होगी जो पारंपरिक पहलगाम रास्ते से होते हुए अलग अलग कैंप्स पर रुकेगी। 22 अगस्त 2026 श्रीनगर से पहलगाम का सफर जो है छड़ी मुबारक का शुरू होगा। पहलगाम लिदर नदी के किनारे पूजा होगी। 13 अगस्त पहलगाम जो है इसका पड़ाव रहेगा, अब दूसरा दिन भी वहीं रखा जाएगा। 24 अगस्त को पहलगाम से चंदनवारी की जो यात्रा है वो शुरू होगी। 25 अगस्त को चंदनवारी से शीशनाग की ओर जो है छड़ी मुबारक को लिया जाएगा। 26 अगस्त को शीशनाग से पंचतरनी का सफ़र तय किया जाएगा। 27 अगस्त को पंचतरनी कैंप में ही इसे रखा जाएगा और 28 अगस्त को पंचतरनी से पवित्र गुफा जो है छड़ी मुबारक को लिया जाएगा जहाँ पर इसकी आखिरी पूजा की जाएगी। तो यहाँ पर रक्षाबंधन के दिन सुबह गुफा में पूरे विधि विधान से पूजा होगी जिसके साथ ही साल 2026 की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी।

जी श्रोताओं, जैसा कि हमने छड़ी मुबारक के हवाले से आप तक इन्फॉर्मेशन्स पहुंचाए उसके शेड्यूल के हवाले से कि 28 अगस्त जो है, जैसा कि हमने कहा कि पंचतरणी से पवित्र गुफा की और छड़ी मुबारक को लिया जाएगा, जहां पर इसकी आखिरी पूजा जो है वो की जाएगी और रक्षाबंधन के दिन सुबह गुफा में पूरे विधि विधान से पूजा होगी, जिसके साथ ही साल 2026 की अमरनाथ यात्रा पूरी तरह संपन्न हो जाएगी। अगर हम वापसी की यात्रा के हवाले से बात करें तो 29 अगस्त को गुफा से वापसी शुरू होगी और पहलगाम में रात का ठहराव होगा। जी हाँ, और 30 अगस्त 2026 को लिदर नदी के किनारे आखिरी पूजा और फॉर्मल विसर्जन की रस्मों के साथ छड़ी मुबारक वापस श्रीनगर लौट आएगी। आपको बता दें कि खराब रास्तों को देखते हुए बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन यानी BRO सिर्फ इस पवित्र छड़ी के रास्ते को सेफ बनाने के लिए दिन रात काम कर रही है। छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले साधुओं और प्रशासनिक लोगों को कड़ी सुरक्षा के बीच गुफा तक ले जाया जाएगा। आपको मैं ये बताना चाहूंगी कि जो दशनामी अखाड़ा और छड़ी मुबारक के साथ चलने वाले साधुओं की जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस है वो क्या होती है। दशनामी अखाड़ा जो है श्रीनगर का एक बेहद ऐतिहासिक और पवित्र स्थल है, ये आपको जानने की ज़रूरत है, जो छड़ी मुबारक का मुख्य केंद्र है। इसकी जो लोकेशन है वो श्रीनगर के मुख्य इलाके बडशा चौक, जिसे लाल चौक भी कहा जाता है, उसके पास है। जहलम नदी के किनारे ये स्थित है। इसे श्री अमरेश्वर मंदिर कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। अमरनाथ यात्रा के औपचारिक आगाज और समापन से जुड़ी सभी मुख्य रस्में जैसे छड़ी स्थापना और छड़ी पूजन इसी मंदिर कॉम्प्लेक्स में होती है। महंत दीपेंद्र गिरी जी यहीं से पवित्र छड़ी को लेकर पहलगाम के लिए रवाना होते हैं। छड़ी मुबारक के साथ जो साधु और महात्मा पैदल गुफा तक जाते हैं उनके लिए प्रशासन और श्राइन बोर्ड एक विशेष रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जो है वो फॉलो करता है। जो साधु बाहर के राज्यों से आते हैं उनका पहला वेरिफिकेशन और तात्काल यानी कि स्पॉट रजिस्ट्रेशन जम्मू के सरस्वती धाम और वैष्णवी धाम में होता है। वहां उन्हें बायोमेट्रिक टोकन्स और RFID टैग्स दिए जाते हैं। श्रीनगर पहुंचने के बाद छड़ी मुबारक यात्रा पर चलने वाले सभी साधुओं को दशनामी अखाड़ा में अपना नाम दर्ज कराना होता है। महंत जी और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की देखरेख में उनका एक फाइनल लिस्ट जो है वो तैयार होता है। ऊंचाई पर चलने और खराब मौसम से बचने के लिए सभी साधुओं के लिए भी सरकारी डॉक्टर द्वारा जारी किया गया

कंपलसरी हेल्थ सर्टिफिकेट है वो बहुत लाजमी है। विदाउट मेडिकल फिटनेस किसी को भी छड़ी के साथ आगे जाने की इजाज़त नहीं मिलती है। लिस्ट फाइनल होने के बाद प्रशासन उन साधुओं के लिए विशेष यात्रा पासेस और सिक्योरिटी आइडेंटिटी कार्ड्स जारी करता है। इन साधुओं के रहने, खाने और ट्रांसपोर्ट का इंतजाम अखाड़ा ट्रस्ट और जम्मू कश्मीर प्रशासन मिलकर करता है। तो अगर आप अमरनाथ यात्रा जो है उस दर्शन नहीं कर पाए हैं, अगर आप बाबा भोलेनाथ की गुफा तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो कोशिश करें कि जो ये छड़ी मुबारक है इसके दर्शन आपको प्राप्त हो। क्योंकि जैसा कि मैंने कहा कि माना जाता है कि अगर आप किसी वजह से गुफा तक नहीं पहुंच पाते हैं और आप इस छड़ी के दर्शन करते हैं, तो आपका जो नाम है उन्हीं श्रद्धालुओं में लिखा जाता है जिन्होंने गुफा के अंदर बाबा भोलेनाथ के दर्शन जो है प्राप्त कर लिए होते हैं। तो यहाँ पर आप हमारे साथ बने रहिए, आप तक जो है शरण शरण की सूचना पहुँचाते रहेंगे।

0: श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं एफएम बालतल, एफएम पहलगाम, डीटीएच और न्यूज ऑन एआईआर की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। जी श्रोताओं, हमारे साथ हमारे संवाददाता इमरान नायकू जुड़ चुके हैं श्रीनगर से। क्या कुछ अपडेट्स हैं, आइए सुनते हैं। जी इमरान, पवित्र छड़ी मुबारक को हाल ही में शंकराचार्य मंदिर और शारिका भवानी मंदिर ले जाया गया है। इस वक्त दशनामी अखाड़ा में आने वाले दिनों की रस्मों को लेकर क्या तैयारियां हैं?
1: बिल्कुल शुक्रिया। जैसे कि आपने कहा कि छड़ी मुबारक के शेड्यूल के मुताबिक 12 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर के हिस्टोरिक शंकराचार्य मंदिर लिया गया था। उसके बाद 13 अगस्त को इसे पूजा के लिए शरीका भवन टेंपल या मंदिर लिया गया था, वहां बाजत तौर पर इसकी पूजा हुई थी। और अब कल यानी 15 अगस्त को छड़ी सतफना सरमनी होगी, जो कि श्री अमरेश्वर टेंपल दशनमी और दशनमी अखाड़ा श्रीनगर में हो रही है। और इसी तरीके से 17 अगस्त को भी ट्रेडिशनल जो होली छड़ी पूजन है वो भी दशनमी अखाड़ा श्रीनगर में नाग पंचमी के मौके पर जो है होगी। और साथ ही 22 अगस्त को छड़ी मुबारक को श्रीनगर से पहलगाम लिया जाएगा और 22 और 23 तारीख की रात को पहलगाम में इसे रखा जाएगा। और 24 अगस्त को भी चंदनवारी में छड़ी मुबारक को नाइट हॉल्ट में रखा जाएगा और 25 नाइट को शेषनाग में और 26 और 27 की रात में जो पंचतरणी है वहां पे और 28 जो तारीख है वहां छड़ी मुबारक को अमरनाथ या ये जो गुफा है वहां तक लिया जाएगा। और जो श्रावण पूर्णिमा है उसके मौके पर इसकी आखिरी और फाइनल पूजन होगी और वहीं पर दर्शन भी होगा। सो ओवरऑल अभी चूंकि छड़ी मुबारक श्रीनगर में है, जैसे कि पिछले 3 दिनों से हम देख रहे हैं कि 12 और 13 तारीख को यहाँ पे छड़ी मुबारक की बाजब्त तौर पर शंकराचार्य टेम्पल और या मंदिर और इसके अलावा शारिका भवन मंदिर में इसकी पूजा हुई है। और जैसे मैंने कहा कि कल छड़ी सतफना जो है वो यहाँ पे होगी और इस सिलसिले में श्री अमरेश्वर टेम्पल श्रीनगर में ये इसकी जो है तकरीबात होगी। और इस सिलसिले में हम देख रहे हैं कि इंतजामिया की तरफ से पहले से ही सिक्योरिटी रखी गई है और यहाँ इस में शामिल होने के लिए या शिरकत करने के लिए इनविटेशन जो भी आना चाहे उनके लिए कहा गया था कि रजिस्ट्रेशन लाजमी है और उस रजिस्टर जो रजिस्टर्ड होंगे तो वो अपने पासेस दिखा के आई कार्ड दिखा के अंदर दाखिल हो सकते हैं और कल इस मौके पर जो है इसकी पूजा कर सकते हैं।
0: जी इमरान, जी इमरान, जी श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता इमरान नायकू जो श्रीनगर से हमारे साथ जुड़ चुके थे। और यहाँ पर छड़ी मुबारक के हवाले से जो है इमरान हमें जानकारी दे रहे थे। कोशिश करेंगे इमरान के साथ वापस जुड़ने की, क्योंकि कॉल जो है बीच में ही डिस्कनेक्ट हो गई है। तो यहाँ पर हम छड़ी मुबारक के हवाले से बात कर रहे थे। छड़ी मुबारक, जी इमरान, आपके साथ वापस जुड़ने की कोशिश कर रहे थे, तो आप छड़ी मुबारक के हवाले से ही हमें इन्फॉर्मेशन जो है हम तक जानकारी पहुंचा रहे थे।
1: जी बिल्कुल, जैसे कि मैंने कहा कि कल 15 अगस्त के मौके पर यहाँ श्रीनगर में इस छड़ी मुबारक की दोबारा जो पूजन होगी और इस सिलसिले में पहले ही कहा गया है कि जो इसमें शामिल होना चाहेंगे तो उनको बाज़ाब्ता तौर पर जो रजिस्ट्रेशन जिन्होंने की होगी तो उस रजिस्ट्रेशन के मुताबिक ही उन लोगों को यहाँ पे अंदर आने की इजाजत दी जाएगी। और हम देख रहे हैं कि इस सिलसिले में एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से पहले से ही इंतजाम किए गए हैं और तमाम तर जो फैसिलिटीज है वो साधु साध्वीज के लिए रखी गई है या जो कश्मीरी पंडित है या जो भी लोग इसमें जाना चाहेंगे। और कल जैसे मैंने कहा कि छड़ी जो सतफना सरमनी है वो यहाँ श्रीनगर के श्री अमरेश्वर मंदिर में मुनाकिद हो रही है। और इस सिलसिले में पहले से ही जो शेड्यूल है छड़ी मुबारक का वो जारी किया गया था, और उस शेड्यूल के मुताबिक ही आगे भी छड़ी मुबारक जो है इसको लिया जाएगा। और फिलहाल कल 15 को, जैसे मैंने कहा कि श्री अमरेश्वर मंदिर दशमी श्रीनगर में,

0: छदी सत्सना होगी, और इसके अलावा 17 अगस्त को जो छदी पूजन है वो दशमी अखाड़ा श्रीनगर में होगी, और उस दिन नाग पंचमी भी है, और उस नाग पंचमी के मौके पर ये ट्रेडिशनल होली छड़ी पूजन जो है वो मुनाकिद होगी। और जैसे मैंने आगाज में कहा कि 22 तारीख को छड़ी मुबारक को श्रीनगर से पहलगाम लिया जाएगा, 22 और 23 तारीख की रात को पहलगाम में रखा जाएगा, और 24 तारीख की रात को चंदनवाड़ी, और 25 तारीख की रात को शेषनाग में, और 26 और 27 तारीख में भी पंचतरणी में, और 28 तारीख को इस छड़ी मुबारक को अमरनाथ जी जो पवित्र गुफा है वहां लिया जाएगा, और श्रावण पूर्णिमा के मौके पर वहां पर आखिरी पूजन और दर्शन जो है वो अदा किया जाएगा।
1: जी इमरान, आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।
0: शुक्रिया
1: जी। श्रोताओं, ये थे हमारे संवाददाता इमरान नायकू श्रीनगर से, जिन्होंने हम तक छड़ी मुबारक के हवाले से कई सारी जानकारियां जो हैं वो पहुंचाई हैं। यहाँ पर छड़ी मुबारक की अगर बात करें तो छड़ी मुबारक, जिसे भगवान शिव की पवित्र छड़ी भी कहा जाता है, इसका इतिहास अमरनाथ यात्रा की सदियों पुरानी परंपराओं से जुड़ा हुआ है, जिसका नाता कश्मीर में हिंदू सन्यासी की शुरुआत से है। मान्यता है कि 8वीं सेंचुरी में गुरु आदि शंकराचार्य ने इस पवित्र परंपरा की शुरुआत की थी। उन्होंने दशनामी सन्यासियों के लिए इस प्रथा को बनाया ताकि वो हिमालया क्षेत्रों में धर्म और सुरक्षा का प्रतीक लेकर चल सकें। छड़ी मुबारक असल में एक पवित्र चांदी की छड़ी है जो भगवान शिव की शक्ति और उनके कल्याणकारी रूप को दर्शाती है। इसे शिवा की ही एक दिव्य प्रतीक माना जाता है। सदियों पहले जब रास्ते बेहद दुर्गम होते थे, बटोटी और पहलगाम के लोकल लोग, खासकर मलिक परिवार के मुस्लिम चरवाहे और दशनामी अखाड़ा के साधु मिलकर इस यात्रा की अगवाही करते थे। तब से लेकर आज तक छड़ी मुबारक के गुफा में पहुंचने पर ही यात्रा का समापन माना जाता है। श्रीनगर के दशनामी अखाड़ा, जिसे श्री अमरेश्वर मंदिर का जो है कहा जाता है, को छड़ी मुबारक का परमानेंट घर माना जाता है। साल भर ये पवित्र छड़ी मुबारक यहीं सुरक्षित रखी जाती है। इस पवित्र छड़ी के मुख्य संरक्षक दशनामी अखाड़ा के महंत होते हैं। मौजूदा समय में महंत दीपेंद्र गिरी जी इसकी अगवाही कर रहे हैं। हर साल श्रावण महीने में वो इसे अपने हाथों में लेकर पैदल अमरनाथ गुफा तक की कठिन यात्रा पूरी करते हैं। छड़ी मुबारक जो है डायरेक्ट गुफा नहीं जाती हैं, बल्कि इसे पहले सदियों पुराने कुछ मुख्य रस्में जो हैं वो की जाती है। सबसे पहले, जैसा कि आप जानते हैं कि पवित्र छड़ी को श्रीनगर के ऐतिहासिक शंकराचार्य मंदिर और हरि पर्वत स्थित शारिका भवानी मंदिर ले जाया जाता है, जहां विशेष शांति पूजा होती है। इसके बाद दशनामी अखाड़ा में इसे स्थापित किया जाता है और नाग पंचमी के दिन मुख्य छड़ी पूजन होता है। इस सभी रस्मों के बाद ही छड़ी श्रीनगर से रवाना होती है और पहलगाम, चंदनवारी, शीशनाग और पंचतरणी होते हुए रक्षाबंधन के दिन अमरनाथ गुफा पहुंचती हैं।

पुरानिक मान्यताओं के अनुसार अगर कोई व्यक्ति बीमार है, बुजुर्ग है या किसी वजह से अमरनाथ गुफा तक गुफा की कठिन चढ़ाई नहीं कर सकता है तो वो अगर रास्ते के पड़ाव पर छड़ी मुबारक के दर्शन कर लें तो उसे बाबा बर्फानी के दर्शन के बराबर ही पुण्य मिलता है। छड़ी मुबारक की यात्रा कश्मीर के कश्मीरियत का सबसे बड़ा प्रतीक है। आज भी जब छड़ी मुबारक पहलगाम और रास्ते के अन्य इलाकों से गुजरती है तो लोकल कश्मीरी मुस्लिम भाई इसका बड़े उत्साह और सम्मान के साथ स्वागत करते हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7 FM पहलगाम 100.1 DTH और न्यूज ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए हम छड़ी मुबारक के हवाले से आपके साथ बात कर रहे थे और यहाँ पर छड़ी मुबारक से जुड़े कुछ चमत्कार जो है उनके हवाले से आपके साथ बात करना चाहेंगे। अमरनाथ गुफा और छड़ी मुबारक के साथ सफ़ेद

कबूतरों की जोड़ी का किस्सा सदियों से सबसे बड़ा चमत्कार माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार जब भगवान शिव माता पार्वती को अमर होने की कथा सुना रहे थे, तब गुफा में उन दोनों के अलावा दो कबूतर के अंडे भी मौजूद थे। वो दोनों अंडे उस कथा को सुनकर फूट गए और उसमें से जो दो कबूतर निकले वो हमेशा के लिए अमर हो गए। आज भी ये चमत्कार

को लेकर भी एक दिलचस्प चमत्कारिक अनुभव जुड़ा हुआ है। छड़ी मुबारक को हमेशा दशनामी अखाड़ा के महंत अपने हाथों में लेकर पैदल चलते हैं। पुराने साधुओं और महंत जी के अनुभवों के मुताबिक जब यात्रा शुरू होती है तो छड़ी का वजन बिल्कुल आम होता है, लेकिन जैसे जैसे रास्ता मुश्किल होता जाता है, जैसे पिस्सू टॉप या महागुनस टॉप की खड़ी चढ़ाई, तब छड़ी का वजन अचानक बेहद हल्का महसूस होने लगता है, जैसे कोई दिव्य शक्ति महंत जी को ऊपर की ओर खींच रही हो। जब छड़ी पवित्र गुफा के बिल्कुल करीब पहुंचती है तो इसका वजन फिर से बढ़ जाता है, जो इस बात का संकेत माना जाता है कि शिवा ने अपनी शक्ति को गुफा में स्थापित कर लिया है। सदियों से ये रिवाज है कि जब छड़ी मुबारक श्रीनगर से पहलगाम पहुंचती है तो वहां के लोकल कश्मीरी मुस्लिम चरवाहे जो हैं और जो व्यापारी हैं इसका सबसे पहले स्वागत करते हैं। जब तक छड़ी मुबारक रास्ते से गुजरती हैं, पूरे इलाके में एक अजीब सा सुकून और शांति का माहौल बन जाता है। इस यात्रा को रोकने या इसमें बाधा डालने की कोशिश आज तक कोई नहीं कर पाया, क्योंकि इसे हर धर्म के लोग अपना सौभाग्य मानते हैं।

श्रोताओं, छड़ी मुबारक की यात्रा के दौरान दशनामी अखाड़ा के सन्यासी बेहद कठिन और नियमित डिसिप्लिन्ड लाइफ फॉलो करते हैं। यात्रा के पैदल सफर के दौरान कई सन्यासी मौन व्रत रखते हैं। वो चलते वक्त किसी से बात नहीं करते और अपना पूरा ध्यान मन ही मन भगवान शिव के मंत्र के मंत्र पर रखते हैं। सभी साधु सुबह 3:30 से 4:30 बजे के बीच जग जाते हैं। पहला काम पवित्र नदियों जैसे पहलगाम में लिदर नदी या शीशनाग झील के ठंडे पानी में स्नान करना होता है, चाहे ठंड -डिग्री में ही क्यों ना हो। कैंप्स पर रुकने के बाद साधु अपनी धुनी जलाते हैं। इस धुनी के पास बैठकर वो घंटों ध्यान और प्राणायाम करते हैं ताकि उनका शरीर हाई ऑल्टीट्यूड और कम ऑक्सीजन के हिसाब से ढल सके। यात्रा के दौरान साधु सिर्फ एक समय सात्विक भोजन यानी कि बिना प्याज लहसुन का खाना जो है वो खाते हैं, जो कैंप्स पर मौजूद लंगर द्वारा तैयार किया जाता है। गुफा में मुख्य पूजा और आरती सुबह 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच शुरू होती है, जैसे ही छड़ी मुबारक गुफा के अंदर प्रवेश करती है। महंत दीपेंद्र गिरी जी सभी दशनामी सन्यासियों के साथ गुफा के अंदर बैठते हैं। पवित्र शिवलिंग और छड़ी मुबारक को आमने सामने रखकर पूजन शुरू होता है। आरती के दौरान पूरी गुफा बम बम बोले, हर हर महादेव और कई सारे मंत्रों से गूंज उठती है। सन्यासी एक साथ शंख और डमरू बजाते हैं, जिससे वहां का माहौल बेहद अद्भुत और आध्यात्मिक हो जाता है। इस आरती के पूरा होने के बाद प्रशासन और श्राइन बोर्ड इस साल की यात्रा के पूरा होने की औपचारिक अनाउंसमेंट करता है। इसके बाद सभी साधुओं को प्रसाद बांटा जाता है और वापसी की यात्रा शुरू हो जाती है।

श्रोताओं, जब भी आप अमरनाथ यात्रा की यात्रा को याद करेंगे तो हम पूरे यकीन के साथ कहते हैं कि आप कश्मीर की कश्मीरियत, कश्मीर की कश्मीरियों की इंसानियत और कश्मीरियों की मेहमान नवाजी को भी ज़रूर याद करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि कश्मीर की मेहमान नवाजी पूरे विश्व में मशहूर है। अमरनाथ यात्रा के दौरान जब रास्ते मुश्किल होते हैं तब ये मेहमान नवाजी एक अलग ही मिसाल पेश करती है। हर साल लाखों श्रद्धालु कश्मीर आते हैं और उनकी इस मुश्किल यात्रा को सफल बनाने के पीछे लोकल कश्मीरी मुस्लिम भाइयों का सबसे बड़ा हाथ होता है। चंदनवाड़ी और बालतल से लेकर पवित्र गुफा तक जो लोग पालकी और घोड़ों पर यात्रियों को लेकर जाते हैं वो उनकी सुरक्षा अपनी जान से ज्यादा करते हैं। जब यात्री थक जाते हैं तो लोकल कश्मीरी लोग रास्ते में उन्हें पानी पिलाते हैं, उनकी थकन दूर करने के लिए पैरों की मालिश तक करते हैं और रास्ते के मुश्किल हालात में उनका हौसला बढ़ाते हैं। कश्मीरी घरों या कैंप्स में जब भी कोई मेहमान आता है तो उनका स्वागत वहाँ के पारंपरिक ड्रिंक्स हैं उन

किया जाता है। जैसे कि सबसे पहले अगर हम बात करें तो कश्मीरी कहवा जिसमें आता है, ये एक सदियों पुराना केसर, ये सदियों पुरानी केसर की चाय है जिसमें बादाम, इलायची और दालचीनी डाली जाती है, और ये ठंड के मौसम में यात्रियों को अंदर से गर्मी और ताकत देता है। नून चाय की अगर बात करें, एक गुलाबी रंग की नमकीन चाय होती है जिसे लोकल लोग सुबह शाम कश्मीरी रोटी के साथ मेहमानों को परोसते हैं। अगर आप कश्मीर के किसी लोकल दोस्त के घर जाते हैं तो वह आपके लिए वाजवान का इंतज़ाम करते हैं। ये कश्मीरी खाने का सबसे शाही और पारंपरिक रूप है। अगर आप डल लेक या निगीन लेक के हाउस बोट्स में रहते हैं तो वहाँ रहना सिर्फ एक स्टे नहीं होता बल्कि कश्मीरियत को महसूस करने का तरीका होता है। जो हाउस बोट के मालिक होते हैं वह अपने मेहमानों को का ध्यान जो है अपने परिवार के सदस्य की तरह रखते हैं। कश्मीर के लोग मुश्किल से मुश्किल हालात, जैसे बारिश हो या हाईवे ब्लॉकेज हो, कोई भी टाइम हो, कोई भी मुश्किल हालात हो, इस दौरान भी यात्रियों को अपने घरों में पनाह देते हैं और उन्हें अपने घर जैसा, अपने जैसे कि जो यात्री होते हैं अगर वो अपने घरों में होंगे वैसा ही फील उन्हें यहाँ के घरों में भी महसूस होता है, यहाँ के कैंप्स में, यहाँ के रास्तों पर फील होता है। और ये हम नहीं कहते, यहाँ जो भी यात्री आता है उनका यही कहना होता है कि कश्मीर जितना खूबसूरत है, यहाँ के लोग, कश्मीर की यहाँ के लोग जो हैं उनका दिल जो है उससे भी ज़्यादा खूबसूरत है। और सच में बहुत फख्र होता है कि जब लोग यहाँ के लोकल्स की तारीफ़ करते हैं, यहाँ की मेहमान नवाजी की तारीफ़ करते हैं। और हम जैसा कि हमने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हम यकीन करते हैं कि आप जब भी इस यात्रा को याद करेंगे, इस सफ़र को याद करेंगे, तो यहाँ के कश्मीरियों को, यहाँ की मेहमान नवाजी को भी याद करेंगे और कोशिश करेंगे कि यहाँ की जो मेहमान नवाजी है, यहाँ के जो लोग हैं, यहाँ की जो खूबसूरती है उसको आप लोगों तक पहुँचाएँ, लोगों के साथ शेयर करें, ताकि यहाँ का जो टूरिज़्म है वो भी बढ़े और हर साल जो लोग यहाँ आने की कोशिश करते हैं उनके लिए आसानी हो और वो अपना मन बनाए कश्मीर आने के लिए या इस यात्रा पर आने के लिए। तो आप हमारे साथ बने रहिए, हमारे संग FM बालतल, FM पहलगाम के संग। यहाँ पर एक भजन सुनते हैं आप, FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप, आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए अमरनाथ यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण सुन रहे हैं।

श्री अमरनाथ जी यात्रा 2026 का ये विशेष प्रसारण आप सुन रहे हैं FM बालतल 103.7, FM पहलगाम 100.1, DTH और न्यूज़ ऑन AIR की मोबाइल ऐप आकाशवाणी आराधना चैनल के जरिए। श्रोताओं, हम कोशिश करते हैं कि आप हर पल इस पवित्र यात्रा के साथ जुड़े रहें। तो यहाँ पर हम आपके साथ जो है FM बालतल, FM पहलगाम, DTH और DTH के ज़रिए भी जुड़े हुए हैं। ऑल इंडिया रेडियो ऑन AIR मोबाइल ऐप आप डाउनलोड कर सकते हैं, जिसके थ्रू हम आपके साथ जुड़े रहते हैं। यहाँ पर हम आपको बताना चाहते हैं कि अब वक्त हो रहा है आरती का। आइए आरती सुनते हैं।

0: सत्चित आनंद स्वरूप देवों के देव महादेव कालों के काल महाकाल नाथों के नाथ अमरनाथ बाबा बर्फानी के पावन धाम में मंगल भवन में आनंद भवन में कल्याण भवन में सुंदर दिव्य अलौकिक भवन में शांत भवन में आप सभी भक्तजन साधक जन श्रद्धा से विश्वास से आनंदमयता से प्रेम से श्रावण मास के उपलक्ष्य पर बाबा के धाम में बैठकर बाबा की स्तुति कर रहे हैं, बाबा के मंगल भवन का दर्शन कर रहे हैं, बाबा के इस निराकार रूप का दर्शन कर रहे हैं, माँ भगवती का दर्शन कर रहे हैं। वास्तव में आप सभी पुण्यकर्मी हैं, कृपा पात्र हैं। भोले बाबा की कृपा हुई है, भोले बाबा ने पूर्ण कृपा की है, आप बाबा के दरबार में बैठकर अपनी भक्ति रूपी भंडार भर रहे हैं, अपने अच्छे कर्मों का भंडार भर रहे हैं, कृपा का भंडार भर रहे हैं। ये भोले भंडारी की कृपा है। भोले तो भोले हैं, पर जब वो भंडार बनने पे आ जाते हैं तो खाली झोलियां भक्तों की भर देते हैं। बोलिए शंकर भगवान
1: की जय।
0: बाबा का नाम भोले भंडारी छोटा मोटा नाम नहीं है, बोला भी ऐसा कि सब कुछ दान दे दे। माँ पार्वती ने महल बनाने के लिए कहा तो माँ से कहा कि हे पार्वती, हम तो कैलाशवासी हैं, हमें क्या महलों की आवश्यकता है। तो माँ ने जिद की, सोने की लंका बनाई, सोने का महल बनाया और रावण को बुलाया पूजन के लिए। और ऐसे दानी रावण ने मांगा कि दक्षिणा में यही दे दो, तो हमारे भोले भंडारी बिना किसी बात का विचार करते हुए सोने का जो महल था वो रावण को दान कर दिया। बोलिए शंकर भगवान। ऐसे बांटने वाले में देवों के देव महादेव सबसे अग्रगण्य हैं। बाकी देव संग्रहण करते हैं और अपने पास सब कुछ रखते हैं, ये बांटते जाते हैं। और कोई विष अगर आ जाए, अगर कोई संसार में ऐसी कोई संकट आ जाए, वो संकट को अपने ऊपर ले लेते हैं, ऐसे महादेव हैं। महादेव होना कोई इतना सरल नहीं है। जो विष पीते हैं वो महादेव हैं, जो दूसरों

0: अमृत पिला देते हैं वो महादेव हैं, जो अपने पास बिल पत्र पत्र पुष्प रखते हैं, वो नंदी आदि को अपने पास रखते हैं, श्रृंगी भृंगी को, भूतों को, प्रेतों को अपने पास रखते हैं और सारी सुख सुविधाएं सभी को दे देते हैं, वो बाबा बर्फानी हैं। बोलिए शंकर
1: भगवान की जय।
0: तो ऐसे ऐसे पैगंबर दारी, ऐसे बाबा बर्फानी की सेवा में आप सभी हैं, ये बहुत बड़ी कृपा का आपको अनुभव हो रहा होगा। ये सबसे बड़ी कृपा मनुष्य मात्र पर हो रही है। ये जो दाम है बाबा का दाम, जब से यात्रा शुरू हुई है तब से बाबा ज्ञान जगाए हुए हैं, ज्ञान की वर्षा हो रही है, अलख जगाए हुए हैं और उस अलख से हमें ज्ञान की प्राप्ति हो रही है। ज्ञान की अलख जगी हुई है, कृपा की अलख जगी हुई है, ज्ञान वैराग्य की अलख जगी हुई है, भक्ति की अलख जगी हुई है। बस आप भी अपने अपने घरों में जहां जहां भी आप बैठे हो, अपने स्थान पर बैठकर, पूजा स्थान पर बैठकर, बाबा को सामने रखकर आप भी अपने भीतर भक्ति की अलख जगाएं, तो ये अलख निरंजन करने वाले ये देवों के देव महादेव आपके भीतर ऐसी अलख जगाएंगे कि आप सदा सर्वदा बाबा बर्फानी के हो जाएंगे। बोलिए शंकर
1: भगवान के जय।
0: ये कृपा जो हो रही है ये इसको अन्यथा मत समझिएगा, ये बाबा के दाम से अलख जग रही है। आप उस अलख का आनंद लीजिए, आप उस अलख रूपी कल्प वृक्ष के नीचे चले जाइए और ऊपर से जो बूंद बूंद टपके, जो फल टपके, उसको प्रेम पूर्वक ग्रहण करे, आदर पूर्वक सादर पूर्वक ग्रहण करे, ये कृपा की अलख जग रही है। तो कृपा ऐसे ही है, आप बाबा के दाम में हैं, ये कृपा है। अपने वाणी से गुणगान कर रहे हैं, यह कृपा है, और अपने हाथों से ताली बज रही है, यही कृपा का स्वरूप है, यही बाबा के अलख रूपी कृपा का स्वरूप है, और कोई कृपा नहीं है। सुतदार और लक्ष्मी पापी के भी होए संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, यदि हमारे घर पुत्र हो जाए वो भी कृपा का स्वरूप नहीं है। तो बाबा तुलसीदास जी कहते हैं कि घर में परिवार बड़ा सुंदर है, धन बहुत अच्छा है, इतना धन है कि कोई पता नहीं, इसको भी कृपा ना समझे। तो कृपा क्या है? कृपा ये है कि बाबा के दाम में मस्तक झुक जाए, बाबा के दाम में सेवा हो जाए, बाबा के दाम में अलख जग जाए, यही कृपा है। बोलिए शंकर भगवान
1: की।
0: संत समागम जो हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, यही कृपा है, संतों के दर्शन हो जाए, बाबा बर्फानी के दाम के दर्शन हो जाए, और चाहे यंत्र के माध्यम से आप आरती के दर्शन कर रहे हैं, दर्शन हो जाए, आरती का श्रवण हो जाए, यही कृपा का फल है। आदि गुरु शंकराचार्य जी कहते हैं, शरीरम स्वरूपम यथा वाकलत्रम यशश्चारु चित्रम दनम मेरु तुल्यम, कि शरीर पर बलवान है, सुंदर शरीर है, हृष्ट पुरुष शरीर है, और धन इतना की पर्वतों जैसे देरिये घर पे लगी हुई इतना धन है, तो फिर भी यदि भगवान के चरणों में प्रीति नहीं हुई, जगत गुरु के चरणों में प्रीति नहीं हुई, तो क्या होगा? तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, तो कोई लाभ होने वाला नहीं है। इसलिए कृपा यही है जो आप इसका अनुभव कर रहे हैं। फिर कहते हैं, विदेशेषु धन्या स्वदे, विदेशेषु मान्या स्वदेशेषु धन्या, विदेश में भी बड़ी प्रतिष्ठा है और अपने देश में भी मान सम्मान बहुत है, सब कुछ प्राप्त है, नौकर चाकर भी है, सारी व्यवस्थाएं भी है, फिर भी अगर बाबा के चरणों से प्रीति नहीं हुई, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, कोई लाभ नहीं। और एक बड़ी अच्छी बात जो हृदय को स्पर्श करने वाली है, षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कभी कभी देखा है कि प्रत्येक व्यक्ति के आज के समय में हर कोई पढ़ा लिखा है, पर पढ़ा लिखा है वो सिर्फ ज्ञान उसके पास है, पर ज्ञान बान नहीं है, विवेक नहीं है, सिर्फ उसको वो बातें आ गई हैं शास्त्रों की, वो ज्ञान तो हो गया है पर ज्ञान पे चल नहीं रहा। तो कहा गया षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, सारे वेद पढ़ लिए, वेदांग भी पढ़ लिए, शिक्षा कल्प निरुक्त व्याकरण छंद ज्योतिष सब पढ़ लिया, उसके बाद मुखे शास्त्र विद्या, और मुख से शास्त्रों की बात भी करते हैं और प्रचार प्रसार भी करते हैं, विचारक भी है और प्रचारक भी है, पर शास्त्रों को ग्रहण नहीं करते, स्वीकार नहीं करते, स्वीकारिक नहीं है। इसलिए षडंगादि वेदो मुखे शास्त्र विद्या, कवित्वादि गद्यम सुपद्यम करोति, लिखने में भी अच्छी शैली है, पर फिर भी यदि इतना कुछ होने के बाद भी बाबा के चरणों से प्रीति नहीं हुई, बाबा बर्फानी के दान से प्रीति नहीं हुई, तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम, तो कोई लाभ नहीं है। इसलिए जो भी है भक्ति मार्ग करने का मार्ग है, वज सेवायाम धातु से भक्ति बनती है, भज माले भजन करना, सेवा माने सेवा करना, भजन भी कर

सेवा भी करो और फिर जब दोनों मिलेंगे तो भक्ति प्रकट होगी। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो मद चित्ता मद गत प्राणा बोधयंता परस्परम कथयंतश्च माम नित्यम तुष्यंति च रमंति च। तो जो कथा श्रवण कर रहे हैं ये ऐसी ऐसे नहीं प्राप्त हो रही, यही कृपा का फल है। जो कथा सुनाते हैं, जो कथा सुनते हैं, सुनने के बाद जीवन में धारण करते हैं, वही बाबा बर्फानी के प्रिय होते हैं। बोलिए शंकर भगवान की जय। यही तो क्या तथा किम तथा किम तथा किम तथा किम। सब कुछ सुनने के बाद वह पहली भक्ति ही श्रवण की, पहली भक्ति ही श्रवण है, बस कथा श्रवण की, उसके बाद आगे नहीं किया। जो आगे कहा गया है श्रवणम कीर्तनम विष्णुम अर्चनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्म निवेदनम, ये आगे वाली भक्ति तो की नहीं, तो केवल श्रवण मात्र से कल्याण नहीं होगा। जो सुनते हो धारण करो, धीरे धीरे बाबा हाथ पकड़ लेंगे। जब बाबा हाथ पकड़ लेंगे सब प्रकार से मंगल हो जाएगा। बोलिए शंकर भगवान की जय। तो इस भाव को धारण करते हुए आइए बाबा बर्फानी की आरती में प्रवेश करें। बोलिए शंकर भगवान के। ओम पवित्र।

ಪಶುಸನಿಲೋಕ್ಯಸನ್ಯಪಯಸನಿ ಅಗ್ನಿ ಪ್ರಯ ಬಹುಳ ಮೇ ಕರೋತ್ಪನ್ನಂ ಪಯೋ.

हर स्वामी मनवान सीता फल पावे हरि ओम हर हर हर हर महा ओम जय शिव ओम कारा मन भज शिव ओम कारा मन रज शिव ओम कारा ओ शिव गल में रुंडा माला ओ शिव योड़त मृगशाला ओ शिव रहते मत बाला ओ शिव पार्वती का प्या ओ शिव ऊपर जलदारा ओ शिव भास्मर मन बाला ओ शिव भूर जदाऊबा ओ शिव बैल चरण जटाओ में गंगा विराजे मस्तक चंद्रमा विराजे औड़ता मृग छा हरि ओम हरे हरे हर हर महा हरि ओम हरे हरे हर हर महा हरि ओम हरे

0: Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama Rama महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्
1: नाना सुगंधि पुष्प यथा कालोद्भवानि पुष्पाञ्जलिमया दत्त गृहाणा वो श्री अमरनाथाय नमः चरण कमलेषु मंत्र पुष्पाञ्जलिं समर्पया बाबा की आदि परिक्रमा करे ओम जय जने वदन भोले बाबा को प्रणाम करें हो नमः शंभवाय
0: अजमयो भवाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः
1: शिवाय च शिव
0: बोलिए
1: शंकर
0: भगवान की जय।
1: तो आइए सभी भक्तजन बाबा बर्फानी का अंतर मन से ध्यान करते हुए भोले बाबा का भजन करें। बोलिए बाबा।

ಯಾರು ಕರ ಕಟೆ ಜಹಸ ಕರ ಕಟತೆ ಹಜಿಂದಗ ನೀರೋ ಕರ ಕಟೆ ಜಹಸ ಕರ.

ਬਾ ਨੇ ਤੂੰ ਗਮ ਦੇ ਜਾ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਸਭ ਤੇਰੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਨੇ।

0: की
1: जय हो,
0: माता पिता की
1: जय हो,
0: गुरुजनों की
1: जय हो,
0: सब संतों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के परिवार की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के गणों की
1: जय हो,
0: शंकर भगवान के भक्तों की
1: जय हो,
0: आज के आनंद की
1: जय हो,
0: अमरनाथ स्वामी की
1: जय हो,
0: बाबा बर्फानी की
1: जय हो,
0: काल हर कष्ट हर
1: दुख हर
0: रोग हर संकट हर
1: हर
0: पार्वती मदे
1: हर हर हर
0: महादेव।
2: शिवा श्याम
0: महादेव।

शाम के 6 बज रहे हैं। ये विशेष प्रसारण आप यात्रा 2026 के सिलसिले में आकाशवाणी के एफएम बालतल से सुन रहे थे। एफएम 103.7 मेगाहर्ट्ज पर, एफएम पहलगाम 100.1 मेगाहर्ट्ज, डीटीएच की आराधना सर्विस, मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर की आराधना चैनल और प्रसार भारती के वेव्स ओटीटी प्लेटफॉर्म पर। आपको बता दें कि अमरनाथ यात्रा 2026 के इस विशेष प्रसारण में हमारे साथ थे हमारे सहायक इंजीनियर्स मंजूर अहमद नजार, फारूक अहमद डार और उनके साथ है मोहम्मद सलीम। मैं आपकी उद्घोष का फरजाना और इस विशेष प्रसारण के प्रस्तुतकर्ता श्री वसीम फारूक। इसके साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं पे समाप्त होती है। प्रातः 7 बजे अमरनाथ यात्रा का विशेष प्रसारण लिए आपकी खिदमत में दोबारा उपस्थित होंगे। जब तक के लिए शुभ यात्रा, शुभ रात्रि, जय हिंद।

लक्ष्मण रेखा पार करने पर रावण असली रूप धारण करके सीता का हरण करते हैं। अब राम लक्ष्मण पंचवटी पहुंचकर सीता को ना पाकर विलाप करते हुए घायल जटायु से मिलते हैं। गिद्धराज राम लक्ष्मण को सीता हरण की दिशा बताते हैं और सीता की खोज करते हुए दोनों भाई शबरी के आश्रम पहुंचते हैं। यह देख शबरी अत्यधिक भक्ति में लीन हो जाती हैं।

राजभवन और उसके बाहर नगर में भी उत्सव का रंग छाया हुआ है। राग रंग के उत्साह से भरे पुरवासी आते जाते दिखाई देते हैं और स्त्रियां नृत्य करती और गीत गाती दिखाई देती हैं।

राजभवन का आंगन किलकारियों से गूंज उठता है। चारों भाई घुटनों के बल चल रहे हैं, माताएं बलैया ले रही हैं और राजा दशरथ झुनझुना बजा रहे हैं।

इधर मुनि विश्वामित्र अपने आश्रम से अयोध्या की ओर प्रस्थान करते हैं और राज दरबार जहां मुनि का स्वागत हो रहा है।

हाथ जोर राजा कहें परम पूज्य मुनिनाथ, भयल आगमन आपके दुनिया भयल सनाथ। हमसे ज्यादा आपके हम सब पर अधिकार, ई हमार सौभाग्य हो जागल भाग हमार। इतना कहकर राजा दशरथ अपने पुत्रों को मुनि के साथ विदा करते हैं।

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

0: ये आकाशवाणी है, मर्यादा पुरुषोत्तम राम।
1: आज हम आपको इस नाटक की पहली कड़ी सुनवा रहे हैं।

0: जासु बचन रवि कर निकर।
1: राम नाम मणि दीप धरु, जीह देह द्वार, तुलसी भीतर बाहरु जो चाहसी उजियार। श्रोताओ, मैं अकिंचन तुलसीदास अपने मुख रूपी द्वार की देहली पर राम नाम का मणिदीप रखकर आपके सामने आया हूं। सो क्यों? इसलिए कि इस अनुपम दीपक ने मेरे भीतर और बाहर जो उजाला कर दिया है, उस उजाले में मैं एक अलौकिक दृश्य देख रहा हूं। देख रहा हूं एक विशाल मानस, ऐसा सरोवर जिसमें मधुर मनोहर मंगलकारी यश का निर्मल और अथाह जल फैला है। किसका है ये यश? एक अनीह अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा, व्यापक विश्वरूप भगवाना, तेहि धरि देह चरित कृत नाना। बात ऐसी हुई कि मुनियों ऋषियों और महाकवियों द्वारा वर्णित इस कथा को मैंने अपने गुरु के मुख से सूकर क्षेत्र नामक तीर्थ में सुना था, किंतु समझी नहीं तस बालपन, तब अति रहेऊं अचेत। मेरे गुरु ने कृपा करके बार बार मुझे कथा सुनाई और ज्यों ज्यों मेरी छोटी मति में थोड़ा बहुत समझ में आने लगा, त्यों त्यों मेरे मन में उजाला सा फैलने लगा। मन में ये संतोष उपजा कि उस लीला को मैं भाषाबद्ध कर पाऊंगा। राम अनंत अनंत गुण, अमित कथा विस्तार, सुनि आचरजुन मानि है जिन्ह कै विमल विचार। हे श्रोताओ, आज संवत 1631 मधुमास चैत्र की नवमी तिथि भौमवार है। आज इसी दिन सादर शिवजी को सिर नवाकर श्री हरि के चरणों में शीश रखकर मैं राम की गुणगाथा का आरंभ कर रहा हूं। शुक्ल पक्ष के अभिजित नक्षत्र की इस तिथि का दोपहर का समय ही समग्र चर अचर जड़ और चेतन प्राणियों को हर्षित करने वाली, जन जन के सुख की मूल, सभी लोगों को विश्राम देने वाली पावन राम जन्म तिथि है। भगवान ने जन्म क्यों लिया, सुनिए। दुष्टों के अत्याचार से पीड़ित दीनहीन गाय के रूप में धरती की रुदनपूर्ण विनती सुनकर ब्रह्मा जी, शिव जी तथा अन्य देवगण भगवान की स्तुति करने लगे।

0: भगवान।
1: श्रोताओ, भूमि और सुरगणों को दुखी हुआ जान, शोक संदेह को हरने वाली, अंतरिक्ष की इन सीम गुफाओं को मानो गुंजायमान करती हुई गंभीर गगन गिरा सुनाई पड़ी।
2: जनी डर पहु मुनि सिद्ध सुरेसा, तुम ही

0: लागि धरि हौ नरबेसा अनसन सहित मनुज अवतारा ले हौ दिनकर बंस उदारा हरि हौ सकल भूमि गरु आई निर्भय हो देव समुदाय।
1: श्रोताओ चलिए अयोध्या नगरी रघुकुल मणि धर्म धुरंधर गुण निधि ज्ञानी हृदय में सारंग धारण करने वाले भगवान की भक्ति में लीन महाराजा दशरथ का पुत्रेष्ट यज्ञ देखिए। श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा।

0: अंतिम आहुति देता हूँ। इसके बाद एकाग्र चित्त ध्यान लीन होकर किसी स्थान पर बैठे
1: रहें।
2: गुरुदेव, क्या कौशल्या को यहाँ नहीं बुलाया जा सकता?
3: क्यों राजन?
2: इसलिए कि एकाग्रचित होते होते मुझे लगता है कि मैं और कौशल्या हम नहीं हैं, कोई और दंपति है। और युगों पूर्व कल्प कल्पांत से पहले कहीं दूर घने जंगल में घोर तपस्या कर रहे हैं।
0: शांत राजन, नेत्र मूंदिए, यज्ञ पुरुष अग्निदेव का ध्यान कीजिए।
2: हाँ, कर रहा हूँ मुनिश्रेष्ठ। आंखें मूंदते ही गुरुवर वहीं ध्यान चला जाता है। यही विधि बीते बरस खट सहस नीर आहार संवत सप्त सहस पुनी रहे समीर आधार।
3: ये तो शुभ लक्षण है राजन। युगों पहले की कोई तपस्या की स्मृति का उमड़ना शुभ लक्षण है।
2: लेकिन कौशल्या,
3: बुलाइएगा लेकिन अभी नहीं।
0: अब मैं समग्र समझा की ये आहुति अग्निदेव को समर्पित करता हूं।

0: आंखें खोल ये राजन, प्रगट अग्नि चरु कर लीने।
1: तो राजन, वशिष्ठ मुनि के वचन, श्रृंग ऋषि की मंत्र साधना और तुम्हारी भक्ति भावपूर्ण याचना पूरी हो। यह लो, यह हवि बांट देहु नृप जाई, जथा जोग जही भाग बनाई।
2: मैं क्या कहूं भगवान, परमानंद में मगन हूं और हरस में हृदय समाए। आपकी असीम अनुकंपा के लिए दंडवत करता हूं। आपके दिव्य दर्शन से मैं,
0: अरे अग्निदेव तो अदृश्य हो गए राजन, आपकी मंगल विधि संपूर्ण हुई। वशिष्ठ मुनि, मैं आपकी अतिथिशाला जाकर वहां विश्राम करूंगा।
3: अब बुलाइए महारानी कौशल्या को राजन।
2: प्रतिहारी, पटरानी को सागर यहां ले आओ।
4: जो आज्ञा।
3: अग्नि देवता के दिए हुए इस चरु में जो पायस है उसका आधा भाग इस स्वर्ण पात्र में अपने ही हाथों डाले राजन।
2: जो आज्ञा।
5: आर्य पुत्र, आपने मुझे ही बुलाया, किंतु कैकेयी और सुमित्रा भी तो वातायन के उस ओर पहुंचाने का आदेश दें।
2: ठहरो कौशल्या, बैठो। सुनो, जब श्रृंगी ऋषि द्वारा अंतिम आहुति देते समय मैं उनके आदेशानुसार आंख मूंद कर ध्यान मग्न होने लगा तो मुझे जान पड़ा कि युग युगों पहले किसी बीहड़ जंगल में तुम और मैं न जाने कैसी अंतहीन तपस्या में लीन बैठे हैं।
5: हाँ, हाँ आर्य पुत्र, आंखें मूंदते ही वो दृश्य इस क्षण मेरे भी सामने स्पष्ट होता जा रहा है। और फिर हम दोनों की तपस्या के बाद मांगू मांगू बरु भय नब

0: पानी परम गंभीर कृपा अमृत सानी।
1: तब हम दोनों ने कहा, जो अनाथ हित हम पर नेहु, तो प्रसन्न हो ये बर देहु, जो स्वरूप बस शिव मन माही, यही कारण मुनि
0: जो फसुंड मन मानस हंसा, सगुन अगुन जही निगम प्रशंसा, देख ही हम सो रूप परिलोचन, कृपा करो परतारित मोचन।
1: आहा, क्या अलौकिक रूप था वो, उन चरणों की शोभा, पद राजीव बरन नहीं जाहि, मुनि मन मधु बस ही जिन माही।
2: हे राजन, आप दोनों उस जन्म में मनु और उनकी पत्नी शत्रुपा थे, आज आप दोनों के उस महातप और भगवान के वरदान के फलस्वरूप।
1: वरदान? ओह, हमने कहा एक लाल सा बड़ूर माही, सुगम अगम कहीं जात सुनाई।
0: तुम्हारी देत अति सुगम गुसाई, अगम लागे मोहि निज कृपनाई।
1: तानि शिरोमणि कृपा निधि, नाथ कहूं सद्भाव, चाहूं तुम्हें समान सुत प्रभु सन कवन दुराव।
2: और वो वर मिला, लेकिन वो रूप भूल जाइए महाराज, भूल जाइए आप। अब
0: कैसे भूल जाएं गुरुवर, भगवान ने स्वयं कहा था, मा तु विवेक अलौकिक तोरे, कबहू न मिटही अनुग्रह मोरे।
2: देवी, भगवान स्वयं भुला देंगे और अवसर पड़ने पर स्वयं याद दिला देंगे, यही तो भगवान की लीला होने जा रही है। देवी, अग्नि देवता द्वारा प्रदत्त इस पायस खीर का आधा भाग अपने पति से सादर ग्रहण करें। उठाइए ये स्वर्ण पात्र, राजन डालिए चरु में से पायस, धीरे धीरे, हाँ बस बस। प्रतिहारी, देवी कैकेयी और सुमित्रा को बुलाओ। आइए देवी कैकेयी और आइए देवी सुमित्रा, इधर बैठे। देवी कैकेयी, चरु में से आधा भाग लीजिए, राजन अब शेष पायस को देवी सुमित्रा के स्वर्ण पात्र में डालिए। देवियों, इस दैवी प्रसाद को अब आप अंतपुर में अपने अपने कक्ष में जाकर प्रसन्न वदन होकर पान करें।
3: यही विध गर्भ सहित सब नारी, भई हृदय हर्षित सुख भारी, मंदिर में सब राजे ही रानी, शोभा सील तेज की खानी। और जब चैत्र मास नवमी तिथि भोमवार को भगवान का जन्म हुआ, तब समस्त देवताओं के समूह को लेकर ब्रह्मा जी पहुंचे, गंधर्वों का गान हुआ, सुमनांजलियों से विमल गगन छा गया, और उसके बाद

व्यापक ब्रह्म निरंजन निर्गुण विगत विनोद सो अज प्रेम भगति बस कौसल्या के गोद। कैकेयी के भरत शत्रुघ्न और सुमित्रा के लक्ष्मण के जन्म होने के उपरांत चारों भाइयों की शिशु लीला मैं अकिंचन दासानुदास तुलसीदास भला कैसे करूं उस बाल लीला का वर्णन। बस सुख संदोह मोह पर ज्ञान गिरा गोतीत दंपति परम प्रेम बस कर शिशु चरित पुनीत। नामकरण हुआ चूड़ा कर्म संस्कार उपनयन और गुरु से शिक्षा। श्रोताओं

0: यह सब चरित मैंने गाया, अब मन लगाकर आगे का प्रसंग सुनिए। राजा दशरथ का दरबार, अवध नरेश, मुनि वशिष्ठ, चारों भाई और अन्य लोग।
1: महाराज, शुभ विपिन के अपने आश्रम में बसकर ज्ञान मनन तप करने वाले गाध तनय मुनिवर विश्वामित्र जी पधारे हैं।
2: हमारे धन्य भाग्य, सब उठकर उनका स्वागत करें।
3: बैठिए अवध नरेश, बैठिए मुनि वशिष्ठ। वास्तव में एक ही मनोरथ है मेरा राजन, ज्ञान विराग सकल गुण ऐना, सो प्रभु मैं देखब भरि नैना।
2: ये आप किसकी बात कर रहे हैं मुनिवर? मेरा दंडवत स्वीकार करें।
3: आप नहीं समझेंगे राजन इस रहस्य को, पर मेरे बंधु वशिष्ठ समझ गए होंगे।
2: अस्तु। ये मेरे चार बेटे हैं मुनिवर। राम, चरण वंदन करो मुनिवर विश्वामित्र के। भरत, लक्ष्मण, शत्रुघ्न, मोह समाज धन्य नहीं दूजा। मुनि, अस कृपा ने की ने कहो, केही कारण आगमन तुम्हारा, कहो सो करत न लावो वारा।
3: असुर समूह सतावहि मोहि, मैं चाचन आयो इंद्रप तोहि, अनुज समेत देहु रघुनाथा, निसिचर बध मैं होब सनाथा। देहु भूप मन हरहित, तजहु मोह अज्ञान, धर्म सुजस प्रभु तुम को, इनक अति कल्याण।
4: राजन, यूं सहसा आपका मुंह खो जाना उचित नहीं। आप रघुवंशी राजाधिराज हैं, ये ठीक नहीं कि आपका हृदय कंप मुख दुति कुमलानी। उत्तर नहीं महाराज।
2: गुरुदेव, चौथे पन पायो सुतचारी, विप्र बचन नहीं कहे हु विचारी। हे मुनि श्रेष्ठ, आप मेरे अतिथि हैं और उस पर भी विप्र। मांगे हु भूमि धेनु धन कोषा, सर्वस देहु आज सहरोसा। देह प्राण ते प्रिय कछु नाही, सो मुनि देहु निमिख एक माही। सब सुत प्रिय मुहि प्राण की नाही, राम देत नहीं बन ही गुसाई। और फिर ये भी तो सोचिए, कहने से चरती घोर कठोरा, कह सुंदर सुत परम किशोरा।
3: वशिष्ठ जी, आप ही अवध नरेश को आश्वासन दें।
4: राजन, पिता के मोह को अलंकार समझिए, कवच नहीं। आप क्षत्रिय हैं और आपका कर्तव्य है कि मुनियों के आश्रमों पर असुरों का जो अत्याचार हो रहा है उसे बंद करने के लिए सबसे समर्थ उपाय कीजिए। राम आपकी दृष्टि में हमेशा शिशु ही रहेंगे, ये मैं समझता हूं। किंतु राम पुरुष सिंह हैं, वीर हैं, धीरमति हैं, मैं उनका गुरु ये जानता हूं। और आप राम के पिता नहीं, आप अवध नरेश, आप भी सत्य से अपरिचित नहीं, इसलिए संदेह का नाश कीजिए। कौन जाने राम के इस अभियान के पीछे कोई ऐसा मंगल मुहूर्त, कोई ऐसी कल्याणकारी घड़ी बाट जोहती हो जिसका आपको अभी तनिक भी आभास नहीं है। इसलिए भूपवर, बहुविधेयी आशीष, आप उन्हें ऋषिवर को निशंक सौंप दीजिए।
2: आपका

0: कहना ठीक है। राम लक्ष्मण आगे आओ। तुम क्षत्रिय पुत्र हो, भुजबल और आत्मबल दोनों की महिमा का ज्ञान गुरु वशिष्ठ से पा चुके हो। समझ लो कि अब तक प्राप्त शिक्षा का अभ्यास करने और शेष शिक्षा प्राप्त करने तुम मुनि श्रेष्ठ के साथ जा रहे हो, पर इधर इधर मेरे निकट आओ। तुम्हें हृदय से तो लगा लूं, मेरे प्राण नाथ सुत दो। तुम मुनि पिता आन नहीं को। अब अपनी जननी से विदा लेने अंदर चलो, आओ।
1: वशिष्ठ जी, मैंने तो महानिधि पाई, श्याम गौर सुंदर दो भाई, विश्वामित्र महानिधि पाई, प्रभु ब्रह्मण्य देव मैं जाना, मोहिनित पिता तजऊ भगवाना।

श्रद्धालु श्रोताओं, यों श्याम गौर सुंदर दो भाई राम लक्ष्मण विश्वामित्र के साथ चले। बीहड़ घना जंगल, रास्ते में मुनि को दीखी राक्षसी ताड़का। सुनी ताड़का क्रोध भरी धाई, श्री रामचंद्र ने धनुष खेचा। देखने में भयानक ताड़का, क्या वास्तव में राम की वैरी थी जिससे वे युद्ध करते? नहीं, देखिए एक ही बाण प्राण हर लीना, दीन जान ते ही निज पद दीना। उसके बाद विश्वामित्र के आश्रम में पहुंचकर प्रात कहा मुनिसन रघुराई, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाई। मुनि वृंद होम करने लगे और राम लक्ष्मण रखवाली। मंत्रोच्चार की ध्वनि कानों में पड़ते ही निशाचर मारीच और सुबाहु अपनी राक्षसी सेना लेकर दौड़ पड़े। देखते ही देखते मारीच पर तो राम ने बिना लोहे के फल वाले बाण से ही ऐसा प्रचंड आघात किया कि वो सत जोजन जा सागर पारा। भीषण युद्ध होने लगा। राक्षस सुबाहु और उसकी सेना क्रोधावेश में उन्मत्त लहरों सी उमड़ पड़ी। तब राम ने अग्निबाण संधाना, पावक सर सुबाहु पुनि मारा और लक्ष्मण अकेले ही असुर सेना पर बरस पड़े। अनुज निशाचर कटक संहारा। आश्रम में निर्भय शांत निर्द्वंद्व यज्ञ कार्य चलने लगे। राम लक्ष्मण को पुरानी कथाएं सुनाकर उनका मन बहलाने के बहाने उनके प्रति अपनी आंतरिक भक्ति ही से आप्लावित होने लगी। एक दिन मुनि ने कहा दोनों भाइयों से कि पुरानी कथाएं तो आपको अनेक सुनाई, चलिए कुछ वर्तमान चरित्र दिखाऊं। मिथिला में राजा जनक धनुष यज्ञ कर रहे हैं। हम लोग उस नगरी की छटा और धनुष यज्ञ का मनोरंजन देखें। चलिए।

उस आश्रम में पत्थर की एक शिला देखी। विश्वामित्र ने कथा बताई। शिला गौतम ऋषि की पत्नी अहल्या का पत्थर का शरीर है। क्यों? पति का शाप। अहल्या से इंद्र ने अपावन व्यवहार किया। पति ने दोनों को शाप दिया। अहल्या पत्थर बन गई। इंद्र को भयंकर रोग ने ग्रस लिया। राम, ये पत्थर की मूरत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। क्यों? गौतम नारी साप बस उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहि कृपा करहु रघुवीर। देखिए और सुनिए ये लौकिक अलौकिक लीला। राम अपने चरणों से शिला को छूते हैं और

0: इसके बाद गंगा पार करके राम लक्ष्मण मुनि के संग विदेह नगरी पहुंचते हैं। वहां की सभ्यता, वापी, कूप, सुमन वाटिकाएं, चौहट गलियां, चारू बाजार, मंगलमय मंदिर सभी देखे और देखे। धवल धाम मणिपुरट पट सुघटित नाना भांति, सिय निवास सुंदर सदन शोभा किम कही जाती। लेकिन ऐसी अद्भुत जनक नगरी की शोभा और उसके सुभग नर नारियों का अवलोकन करने वाले ये दो किशोर बटोही जब सैर करने निकले, सारी नगरी वैभव ऐश्वर्य की भव्यता उन दोनों की दिव्य शोभा को देखकर मानो ठगी सी रह गई। श्रोताओं, धनुष यज्ञ से एक दिन पहले की संध्या, एक पुरातन प्रीति की जो निराली घटना घटी उसे सुने। राजा जनक की वाटिका जहां वसंत ऋतु की छटा फैली है, राम लक्ष्मण शोभा निरखने पहुंचते हैं और महिलाओं से पूछकर फुलवारी में फूल चुन रहे हैं। एक सखी सीता का संग छोड़कर फुलवारी में आ पहुंची। दोनों भाइयों को देखकर प्रेम विवश सीता से जाकर बोली,
1: सखी देखन बागु कुमार दुई आए, बै किशोर सब भांति सुहाए, श्याम गार के में कहां बखानी, गिरा अनैन नैन बिनवानी।
2: अरे ये तो वही तो राजकुमार है, सुन हर्षि सब सखी से आनी, सी ही अति उत्कंठा जानी, एक कही नृप सुतते आली, सुनिजे मुनि संग आई काली, जिन्हने जो रूप मोहनी डारी, कीने स्वस नगर नर नारी, वर्णत छवि जहां तह सब लोगू, अवसी देख अही देखन जोगू। अरे राजकुमारी तुम चारों तरफ यूं कैसे देख रही हो, चकित बिलो कति सकल दिसे, जाने से सुन रही सभी।
3: इस फुलवारी के सुमन अत्यंत सुहावने हैं, पल्लवों में वसंत की छटा विकस रही है, मुनिवर को भी भले लगेंगे।
4: सारा बगीचा ही परम रमणीक है। और ये सुना तुमने
3: क्या,
4: कंकन किंकिन नूपुर धुनि,
3: तात
4: मानह मदन दुंदुभि तीनहि, मनसा विश्व विजय कहाँ कीन्हि।
3: कौन है ये जिन्हें देख के आपके भय विलोचन चारु अचंचल, मनहु सकुची निमित तजे दिगंचल।
4: तात जनक तनयाय सोई, धनुष यज्ञ जहि कारण होई, पूजन गौरी सखी ले आई, करत प्रकाशु फिरई फुलवाई।
3: पर बात इतनी ही तो नहीं जान पड़ती तात,
4: जासु बिलोक की अलौकिक शोभा, सहज पुनीत मोर मन शोभा।
3: तात आपकी टकटकी इस तरह लगती तो मैंने पहले कभी नहीं देखी।
4: सो सब कारण जान विधाता, पर कहीं सुभद अंग सुन भ्राता।
3: समझा समझा, मुझे तो आपका इस तरह ठगे से रह जाना ही बहुत भला लगता है तात।
4: लक्ष्मण मैं असमंजस में हूँ।
3: स्वाभाविक ही है तात।
4: वह बात नहीं, सुनो, रघुबन सिन कर सहज स्वभाव, मनुकुपंथ पगु थरे ही नकाऊ, मोहि अतिशय प्रतीत मन केरी, जे ही सपने हूँ पर नारी न हेरी।
3: लेकिन भगवान विदेह कुमारी भी तो शोभा की सीमा ही जान पड़ती है।
4: पर लक्ष्मण यह मुझे क्या हो रहा है, क्या मैं गुरुओं द्वारा दिखाए पथ से विचलित हो रहा हूँ। वह आदर्श जिनके लहे ही न रिपुरन पीठी, नहीं पावही पर तियमनु डीठी।
3: इस लता गुल में कुछ निराले ही फूल हैं, कुछ इनमें से ही चुने।
2: राजकुमारी तनिक इधर आओ, यहां से देखो उस लता की ओट में।

0: वो बोरे हैं दोनों। श्यामल गौर किशोर सुहाए।
1: सखी
0: क्या
1: हमारी राजकुमारी प्रेम बस हो गए हैं?
0: कौन अच्छा की बात है?
1: देखो ना, लता मंडप में से दोनों बिल्कुल बाहर आ गए हैं।
0: कैसे अपूर्व छविमान लग रहे हैं दोनों। निक से जनुजुग बिमल बिधु जलत पटल बिल गाई।
1: जनक सुता तो गिरिजा की आराधना करने चली।
2: पूजन को विलंब हो रहा है सखी।
0: राजकुमारी बहुरी गौरी कर ध्यान करे हूँ, बोप किशोर देखी कि न ले हूँ।
1: सकुचो मत राजकुमारी,
0: नयन उधर कर देखो ना।
1: सन्मुख आमनी सामनी दो रघु सिंहों का अवलोकन करो।
2: सखियो मुझे मुझे न जाने कैसा लग रहा है।
1: क्या हुआ, क्या हुआ राजकुमारी?
0: चित्त तो ठीक है ना?
1: कैसी बात पूछती है तू?
2: चित्त में आह्लाद भी है और क्षोभ भी। सखी
1: क्षोभ क्यों?
2: सुमेर पिता पन मन अति क्षोभा। और क्या कहूँ सखी?
1: सखियो राजकुमारी को जो परबस देखकर मुझे भय लगता है, इन्हें अब ले चलना।

0: मनोरथ जानहु नीके, बसहु सदा उरपुर सबही के।
1: सुनु सीर सत्य असीस हमारी, पूजि ही मन कामना तुम्हारी। नारद बचन सदा सुचि साचा, सो बरु मिलही जाहि मनु राचा। मनु जाहि राचेउ मिलही सो बरु, सहज सुंदर सावरु। करुणा निधान सुजान सीर, सनेहु जानत रावरु।

ਸੀ ਆਸ਼ਿਕ ਨਬਦ ਦਿਖਾਵੂ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਰਾਮ ਕੋ ਦਿਧਾ ਰੱਬ ਮੈਂ ਰੱਬ

आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है विशेष भक्ति चैनल आराधना। 24 घंटे सुनिए कई भारतीय भाषाओं में अपने मन पसंद भजन, महत्वपूर्ण सांस्कृतिक आयोजनों की सजीव प्रस्तुति, अयोध्या से रामलला की श्रृंगार आरती।

चार धाम यात्रा, अमरनाथ यात्रा, लोक रामायण या पौराणिक प्रसंग, सुनिए न्यूज ऑन AIR ऐप, DTH और यूट्यूब पर। आध्यात्मिक ऊर्जा का संचार करता आकाशवाणी का आराधना चैनल।

भगवान राम 14 वर्ष का वनवास पूरा करके आज अयोध्या पधार रहे। अयोध्या के सारे निवासी एकटक भगवान राम की राह देख रहे हैं। वो अखियां जो सोई नहीं जब से भगवान राम अयोध्या छोड़ के वनवास को गए, आज उन्हीं आंखों को विश्राम मिलेगा। भरत के हृदय में बड़ा आनंद है कि आज भैया आएंगे, दर्शन देंगे, इस नगरी को फिर से अपनाएंगे और इस सिंहासन का कार्यभार फिर से संभाल लेंगे। मां कौशल्या के हृदय में उमंगे उठ रही हैं कि आज मेरे राम आ रहे हैं। बस यही भाव इस भजन में है, आइए इस भजन का आनंद लेते हैं।

पर बसी सुंदर अवधपुरी रामलला की जन्मभूमि। दशरथ नंदन राम जी ने इसी नगरी में अपनी मानव सुलभ बाल लीलाएं की। श्री राम दशानन पर विजय प्राप्त कर जब अयोध्या नगरी पुनः पधारे तो ये जानकर अयोध्या वासियों के आनंद की सीमा न रही कि तारनहार श्री राम अब सदा के लिए यही निवास करेंगे। भक्त जनों और संत जनों की प्रार्थनाओं से रामलला के सर से हर प्रकार की अलाबला टल गई।